सुप्रभात। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 9 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। लीजिए सुनिए हिंदी समाचार जिन्हें दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के

0: युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस। आज आप सुनेंगे इसकी भाग संख्या 398। मुख्य गायक स्वर अनुराधा पौडवाल का, संगीत संयोजन है भूपेंद्र सिंह का।

लोमश ऋषि के श्राप से ब्राह्मण शरीर धारी काकभुशुंडी को कौवे का शरीर प्राप्त हुआ, किंतु साथ ही ऋषिवर ने उन्हें राम मंत्र भी दिया। श्री राम का ध्यान करने की विधि बताकर उन्होंने श्री रामचरित सुनाया, जिसे स्वयं उन्होंने भगवान शिव से सुना था। अत्यंत प्रेम से इनके सिर पर हाथ रखकर ये वर दिया, उन्हें प्रभु कृपा प्राप्त होगी और अपनी इच्छा के अनुसार वे जो भी रूप धारण करना चाहेंगे कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण वरदान उन्हें ये प्राप्त हुआ कि अपना शरीर त्याग करने की इच्छा करने पर ही मृत्यु उनका वरण करेगी, अन्यथा नहीं। उन्हें कोई भी दोष कोई अवगुण व्याप्त नहीं होगा और अपनी इच्छा मात्र से ही जिस उपलब्धि की कामना करेंगे वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाकर काकभुशुंडी ने गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, मैं यही कौवे का शरीर धारण कर 27 कल्पों से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मुझे कौवे का शरीर इसलिए सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि इसी शरीर से मैंने श्री राम की अविचल और अखंड भक्ति पाई है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:15 हो चुके हैं। सुविचार। APJ अब्दुल कलाम के शब्दों में, हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्या को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस सुविचार के बाद आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

ईश्वर के प्रति प्रेम ही सच्ची भक्ति है, और जहां भक्ति है वहीं सच्चा सुकून है। भक्ति वह मार्ग है जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता।

वीरता के लिए डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही उसका असली परिचय।

अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है, जबकि मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करना जानता है। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, जिसमें अगली रचना आपको सुनवा रहे हैं वाणी जयराम की आवाज में।

पुरुषोत्तम दास जलोटा द्वारा गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत जोगन फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में

सुनते हैं अनहोनी फिल्म से ये अगला गीत, जिसे गाया है तलत महमूद ने। गीत के बोल हैं सत्येंद्र के और संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे जीत फिल्म से। प्रेम धवन के बोल और अनिल बिस्वास का संगीत। फिल्म संगीत में अब आपको ले चलते हैं इस गीत की तरफ, जिसे लिखा है श्यामलाल शर्मा ने, तर्ज बनाई है श्याम सुंदर ने, सुलोचना कदम की आवाज़, और फिल्म का नाम है ढोलक।

बाजी फिल्म से ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार साहिर, संगीतकार एसटी बर्मन। इसके साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

ता नमस्कार और सुप्रभात आप तक पहुंचा रही हूँ। भाई जिंदगी को रोशनी देने के लिए तो अपनी आंखें खोलनी ही पड़ेगी। बाहर तो सवेरा बिल्कुल रोशन हो चुका है, लेकिन जब तक हम अपनी पलकों को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, हमारे भीतर तक सूर्य की किरणें कैसे पहुंचेगी? बिल्कुल जी, 7 जब घड़ी में बज जाते हैं सुबह के, तो फिर हमारी बातें और हमारे गीत शुरू हो चुके होते हैं। आप तक पहुंच रहा है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं शैला। ओहो, मुंद के अखियां, ये कैसे बोल रहे हैं भाई? नहीं नहीं नहीं, किसी के भी साथ जाना है तो अपनी आंखों को जरूर खुला रखें। फिलहाल अगर आप अपनी शयन कक्ष को छोड़ चुके हैं तो जल्दी से बाहर का नजारा देख लीजिए। कोई बात नहीं, मौसम में गर्मी है तो क्या हुआ, खुली हवा ताजी हवा तो लेना बनता ही है। सुनते रहिएगा कुछ बातें कुछ गीत।

आज है शनिवार, वीकेंड का आधा हिस्सा। हालांकि किसी के लिए वीकेंड है और किसी के लिए उसी तरह कार्यक्रम अनवरत दिन लेकर आया है। हो सकता है आप में से कुछ को कल के लिए तैयारी करनी, और हो सकता है कि किसी के लिए आज का दिन बिल्कुल वही भाग दौड़ भरा भरा रहने वाला है। तो अगर आपको आज के दिन फुर्सत मिल रही है तो एक काम तो आपको ज़रूर करना है, कुछ ऐसा जो बहुत समय से आपने नहीं किया है लेकिन आपके दिमाग में उलझा हुआ है कि भाई इसे मैं कब पूरा करूँगा या करूँगी।

पंख लगा के उड़ तो जाएं, लेकिन जो ये सूर्य देव अपनी तपती किरणों के साथ हमसे अलग ही प्रतिद्वंदता गाढ़े हुए हैं, उसमें भाई उन पंखों का कर क्या पाएंगे। बिल्कुल जी, आपको बता दूं कि मौसम अपना रंग दिखाने लगा है। रंग में एक ही रंग है कि दिन में अगर बाहर निकलते हैं तो कितना ही आप अपने आप को ढक लीजिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वाह, जो कुछ भी तपती धूप है वो तो हम पर ही पड़ रही है। बिल्कुल, मारवाड़ में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और होगा भी क्यों नहीं, मई का महीना जो शुरू हो चुका है। कल के दिन की, कल यानी जो दिन गुजर गया, उसकी अगर बात करें तो तापमान में बराबर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर की तरफ सुई इशारा कर रही है। और पूर्वानुमान ये कह रहा है कि अगले 2 से 3 दिन ये तापमान और भी बढ़ सकता है। अगर इन्हीं बातों को माने तो भाई ये जो पारा है ये तपते तपते 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और जैसे ही पारा बढ़ेगा, तापमान चढ़ेगा, उसके साथ ही हीट वेव इस सिचुएशन में हम पहुंच सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आपने सोचा है कि बाहर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मेरा तो सुझाव ये है कि क्यों ना घर के अंदर ही रहें और अपने मन को शांत करके ये दिमाग की जो ठंडक है इसे महसूस किया जाए। और इसके लिए ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आज के दिन के लिए आपको कहा था कि भाई कुछ ऐसा सोचिए जो आपने अब तक नहीं किया हो। हो सकता है कोई एक प्लेलिस्ट जो हम बहुत वक्त से सुनने का सोच रहे हो उसे बजा लिया जाए, और उसके साथ ही थोड़ा सा कुकिंग में हाथ आजमा लिया जाए। या फिर कोई एक ऐसी पुरानी बुक जिसमें कहीं बीच में बुक मार्क पता नहीं कितने समय से डला हुआ है और हम भूल भी चुके हैं कि हमने उस किताब का कितना हिस्सा पढ़ लिया है, क्यों ना उस किताब में आगे बढ़ा जाए। मेरी एक फेरिस्त में एक और काम है जो मैं आप तक बता सकती हूँ, आप तक पहुंचा सकती हूँ, वो ये है कि कोई एक ऐसा शख्स जिससे आपने बहुत समय से बातचीत नहीं की है और किसी दौर में ढेर सारी बातें हुआ करती थी, क्यों ना आज फिर

उसे याद किया जाए। इन सब के साथ आपको ये नहीं भूलना है कि आपको अपने तन और मन की तरलता बनाए रखनी है। अपने विचारों में नमी रखिए, अपने भावनाओं में नमी रखिए। बाहर तापमान बढ़ा है तो क्या हुआ, अपने गुस्से को काबू में रखिए।

कार्य नित नया होता दिख रहा है। अगर आप भी पाल रोड नहर चौराहे इस रास्ते पर गए हैं तो बिल्कुल आपको भी नजर आने लगा होगा कि कुछ तो नया यहाँ शुरू हो चुका है। जी हाँ, 760 मीटर लंबा 4 लेन फ्लाईओवर यहाँ बनाया जा रहा है और इसका निर्माण अब गति पकड़ रहा है। नहर चौराहे से दोनों ओर की सड़कों पर इसका निर्माण कार्य चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि अगले साल तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप इस रास्ते पर हैं और अगर आप आसपास थोड़ा गौर से देख रहे हैं तो आपको इसके बनते हुए पिलर्स नजर आने लगेंगे। ये ओवरब्रिज जो बनने वाला है इसके साथ ही एम्स जोधपुर के लिए राहें और भी आसान होने वाली है।

आने वाले सप्ताह में यानी कि 12 मई सूर्य नगरी के लिए ये एक बेहद यादगार दिन है। सूर्य नगरी के इतिहास को याद दिलाता, इसकी चमक को और चमकाता हुआ एक दिन, बिल्कुल 12 मई को जोधपुर स्थापना दिवस ये हम मनाने जा रहे हैं और इसके लिए शहर भर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये होने वाला है 568वां स्थापना दिवस और पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में इसे मनाया जाएगा। तो क्यों ना हम भी इसके लिए कुछ तो तैयारियां कर लें, आखिर अपना शहर जो है।

तो चूंकि स्थापना दिवस मना रहे हैं हम अगले सप्ताह, और आपने मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ अगर अब तक रुख नहीं किया है तो ये एक बेहतर समय होने वाला है। होगा ये कि 11 मई की शाम से ही शहर के जो मुख्य मुख्य चौराहे हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, उन पर सजावट और रोशनी की जाने वाली है। वहीं 12 मई को तो दिन भर कार्यक्रम चलेंगे ही, जिसमें घंटाघर मुख्य केंद्र रहेगा।

12 तारीख को सुबह 10 बजे के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग में जो भी पर्यटक आने वाले हैं, उनका बिल्कुल पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे जोधपुर की जो शान है झालरे और भी सुंदर खूबसूरत जितने भी स्थान हैं, उन्हें और भी खूबसूरती के साथ सजाया जाएगा।

अच्छा म्यूजिक सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, आपको, हमको, हम सभी को, है ना। और खास बात यह है कि अगर अच्छा अपनी पसंद का संगीत हम सुन रहे हैं तो वो हमारे मूड को फर्स्ट क्लास कर देता है।

लेकिन ये बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, अच्छा संगीत उनको भी बेहद सुकून देता है। प्राणी और साथ ही संपूर्ण प्रकृति। हाँ, आप और हम ये बात तो जानते ही हैं कि ये प्रकृति पूर्ण रूपेण संगीतमय है। अच्छा, तो अब इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कैसे देखा जाए? तो अगर आपके आसपास छोटा सा नन्हा सा कोई पौधा है, और विशेष तौर पे अगर ऐसा कि जिसमें रंग बिरंगे फूल भी आ रहे हैं, तो अब आपने ये करना है कि अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में एक काम शामिल ये करना है। सिर्फ खुद ही अच्छा संगीत नहीं सुनना है, बल्कि उस नन्हे से पौधे को, ये जो प्रकृति के रूप में आपकी प्यारी सी दोस्त है, इसे भी संगीत सुनाना है। और फिर देखिएगा कि किस गति से वो बढ़ने लगता है, और हर दिन वो आपको और बेहतर मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा।

तो अच्छे संगीत सुनने की मैं आपसे बात कर रही थी। जो प्रकृति को हर तरीके से प्रभावित करता है, अब हम बात करें अपने खुद पर, तो इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ना सिर्फ संगीत सुनने से, बल्कि इस संगीत के साथ थिरकने के तो और भी फायदे हैं। देखिए भाई, ये कहा जाता है कि हमारी जो स्किन है वो हर 29 दिन में अपने आप को नवीनीकरण करती है। यानी कि सेल्फ रिन्यूअल। और नखरी हुई त्वचा तो हर कोई चाहता है। इसके लिए अगर मैं आपको कहूं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको करना है थोड़ा सा डांस। वाह, है ना, हमारे होठों पर मुस्कुराहट आ ही गई। इससे बेहतर क्या हो सकता है? कभी जरा सा नृत्य किया, अपने तन और मन को खुशनुमा बना लिया। आपको करना है थोड़ा सा वर्कआउट या फिर थोड़ा सा व्यायाम, क्योंकि ये ऐसा होगा कि जब भी आप इस तरह से कोई शारीरिक गतिविधि करेंगे तो हमारा जो रक्त प्रवाह है, रक्त संचार का प्रवाह है, वो बेहतर होगा और इससे हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि डांस, नृत्य करने से बेहतर कोई गतिविधि नहीं हो सकती।

थोड़ा सा व्यायाम, क्योंकि ये ऐसा होगा कि जब भी आप इस तरह से कोई शारीरिक गतिविधि करेंगे तो हमारा जो रक्त प्रवाह है, रक्त संचार का प्रवाह है, वो बेहतर होगा और इससे हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो डिटॉक्सिफाई हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि डांस, नृत्य करने से बेहतर कोई गतिविधि नहीं हो सकती। तो क्यों ना आज से, अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दिया जाए। तो ये प्रोग्राम का अगला ट्रैक और आखिरी ट्रैक सिर्फ आपके लिए। आप अपने नृत्य की प्रतिभा को और बढ़ाएं। उससे पहले मुझे करना होगा आपको टाटा बाय। आप सुन रहे थे कुछ बातें कुछ गीत शैला के साथ। बस जाते जाते यही कहूंगी, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है। लीजिए सुनिए समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के अर्थद्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवी के को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवी के ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी

0: पलानीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरल में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजड़ा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार

0: बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉ राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केन्द्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट हैं नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रूपये गंवाये, हिन्दुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले

भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नंद स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार। एक नया दिन, नया उत्साह और नया अंक। नमस्कार कार्यक्रम का इस वक्त आप सुन रहे हैं जोधपुर के आकाशवाणी केंद्र पर, और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बहुत सारी बातें, साथ ही साथ जानकारियों का पिटारा आपके सामने खोलते हैं और सूचनाओं के साथ गानों का भी साथ होता है। तो आप बने रहिए इस कार्यक्रम के साथ, बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल बता देते हैं कि आज की टीम में कौन कौन है जिनके सहयोग से आप तक पहुंच रहा है कार्यक्रम नमस्कार।
1: कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह जालसू। ट्रांसमीटर पर है सीएल सोनी और चंद्रा राम पटेल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी है शैला माहेश्वरी और एफएम चैनल पर है सत्येंद्र चारण। प्रोग्राम प्रोड्यूसर है नमस्कार के संजय व्यास और संयोजन किया है राजेश लामरू ने। पूरी टीम के साथ मैं सोफिया खान
0: और मैं अर्चना चौहान। तो नमस्कार में ढेर सारी बातें, सूचनाएं और जानकारियां आपको देंगे, लेकिन फिलहाल बढ़े चलते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: जी हाँ दोस्तों, शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन के साथ में 2 दिन की छुट्टी भी मिली है और इन छुट्टियों में पार्टी का मूड तो बनता ही है। और कहते हैं कि जब ये शनिवार की छुट्टी आती है तो हमारे जो पेंडिंग काम है वो तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ नए सप्ताह की शुरुआत में क्या करना है वो भी सोच के रखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। लेकिन सोफिया, जो ये शनिवार की छुट्टी आई है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें भी है, क्योंकि अभी तो बच्चों के स्कूल्स चल रहे हैं, उसके बाद में समर वेकेशन का जो इतना लंबा इंतज़ार है वो खत्म होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग व्लानिंग की या नहीं?
1: प्लानिंग तो होती ही रहेगी और प्लानिंग बड़ों से ज़्यादा जो है बच्चों की हो रही है, क्योंकि उन्हें ये
0: बिल्कुल
1: उत्साह है कि कब छुट्टियां पड़े और कब नानी के घर जाया
0: जाए।
1: जाए।
0: और जो हमारे बिछड़े हुए लोग हैं जिनसे हमें मिलने का मौका मिलता है तो वो एक अवसर बन जाता है इन समर वेकेशन से में। तो हम तो अपने दोस्तों से यही कहना चाहेंगे कि समर वेकेशंस में आप भी अपने लोगों से मिलिए और जो ये रिश्तों में थोड़ी सी जो दूरी आ गई है उसे पाट लीजिए।

0: जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म से ये गाना सुना दोस्तों आपने, और गाने से पहले बात की थी कि रिश्तों को पाटना चाहिए, यानी रिश्तों में जो दूरी है उसे खत्म करना चाहिए. रिश्तों में दूरी इसीलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कामकाजी जो जीवन है हमारा, घर से दूर रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, कई बार बच्चों से भी दूर रहना पड़ता है. और ये जो दूरी है, ये जो टाइम है, इस टाइम का जो शब्दों में इसको हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक माँ है अगर अपने बच्चों से दूर रही है कामकाज के दौरान, अगर एक पिता है अपने परिवार से दूर रह रहा है, तो उसकी जो मनोस्थिति होगी वो क्या ही होगी.
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने. और ये एक मौका होता है जब आप अपने बच्चों के साथ में वक्त गुजार सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी आजकल अपने स्कूल्स और पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो माँ बाप के साथ में टाइम नहीं दे पाते. और सोफिया, एक और बात है कि जब हम अपने समर वेकेशंस में रहा करते थे तो दादी नानी का घर तो हुआ ही करता था, साथ ही साथ हमारे जो भी रिलेशन में होते थे जैसे मामा मासी, वो सब भी आते थे, और जो उनके बच्चे थे उनके साथ भी हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी. लेकिन आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को समर वेकेशंस में भी किसी ना किसी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए डाल देते हैं. या तो वो खेल हो सकता है, या कोई म्यूज़िक हो सकता है, या फिर कोई और काम भी हो सकता है जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को दिन प्रतिदिन नई स्किल सिखाते हैं. तो ये भी एक तरीका होता है कि बच्चों को आप नया कुछ सिखाएं. लेकिन जो ये आपसी जो व्यवहार है,
0: तालमेल है,
1: तालमेल है, जो रिश्तों की गर्मी है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है. लेकिन समय के साथ तो हमें बदलना ही पड़ेगा, और समय के साथ एक नया गाना भी आपका इंतजार कर रहा है.
2: उलझ गए कैसे कोई, हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग चला.

0: जी हाँ दोस्तों, कान्हा पे राधा का और राधा पे कान्हा का रंग तो हमेशा से चढ़ता आया है, लेकिन हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका रंग हम पे चढ़ता है। कहते हैं ना कि हम सब जो आपसी रिश्तों में, आपसी संबंधों में ही बंधे हुए हैं। कुछ लोग हमें ताने देते हैं, कुछ शाबाशी भी, कुछ लोग छोड़ कर जाते हैं, कुछ साथ निभाते हैं। कोई आपका हाथ थाम लेता है तब जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, और कोई आपको सिखाता है कि डर कर भाग जाना चाहिए। लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना है यह निर्णय आपका ही होना चाहिए। जब आपको ठहरना है तो ठहर जाइए, लेकिन वो ठहरना कुछ समय के लिए होना चाहिए, उसके बाद बस चलते रहना है, क्योंकि जो रास्ता है वो तभी पार होगा जब आप चलते रहेंगे।
1: बिल्कुल, चलते रहना ही है। और चलते चलते एक गाना भी सुन लेते हैं।

0: आज खुद को आजमा ले, एक मौका जरूर देती है जिंदगी हमें आजमाने का। वो वक्त ऐसा आता है श्रोताओं के, उसमें हमको खुद को उस जीवन के हिसाब से मोड़ना ही होता है, क्योंकि हम कुछ और तय कर रहे होते हैं और हमारी लाइफ जो है वो कुछ और तय कर रही होती
1: जी
0: है।
1: हाँ, और इसलिए कहा भी गया है कि जो मन का करो तो भी अच्छा, और जो मन का ना हो वो और अच्छा होता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपके ईश्वर की वो जो रजामंदी होती है, सहमति होती है, वो शामिल होती है। इसलिए कहा जाता है कि ज़िंदगी जो ये उतार चढ़ाव आपको सिखाती है, दिखाती है, वो कहीं ना कहीं आपको नया कुछ सिखा के तो जाती है, साथ ही साथ आपको बहुत स्ट्रांग भी बनाती है।
0: बिल्कुल स्ट्रांग तो बनाती है, हर मोड़ पर ज़िंदगी का एक अलग ही लेसन होता है हमारे लिए। हमारी जो व्यस्तताएं होती है, हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एक तरफा हो जाती है और हमें उसका दूसरा पक्ष जो है वो चूज़ करना पड़ता है। और इसी के साथ श्रोताओं बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज और FM एंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने एआई, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। पीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। न केवल ध्यान आकर्षित किया अपितु भारत का पवेलियन वहाँ आज इटली में और देश भर के आर्ट लवर्स के बीच

0: चर्चा का केंद्र बने, भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकर्षित होगा।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एफसीआई सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और एनसीसीएफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूटीबी में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैस कांड में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
2: ढाणी गैस कांड गांव से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत के साथ यहाँ आए थे। इनमें सभी तीन बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जनों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहाँ पर, उनके इस शिकायत के आधार पर सीबीओ साहब को मैंने वहाँ भेजा था। अभी तीन बच्चे वहाँ है, बच्चे स्वस्थ है और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
1: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले दो तीन दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है।

और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार, कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। बातें आगे भी होगी लेकिन फिलहाल सुनवाते हैं ये गीत।

0: दोस्तों आकाशवाणी के जोधपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और नमस्कार में आज आपके साथ है दो साथी अर्चना और सोफिया। और आज का दिन है 9 मई का दिन। और अब बात कर लेते हैं आज के इतिहास की।
1: तो साल 1874 की बात करें तो बॉम्बे यानी अब का मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम शुरू की गई थी। 1907 में श्रोताओं इसकी जगह इलेक्ट्रिक ट्राम ने ले ली थी।
0: वहीं 9 मई 1945 का वह दिन था जब द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया था और जिसे रूस और अन्य यूरोपीय देशों में विक्ट्री डे यानी विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: उन्नीस में श्रोताओं आज के दिन वर्ल्ड बैंक ने पहली बार किसी देश को लोन दिया था। दरअसल 25 जून 1946 को इस बैंक ने आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू किया था और इसके पास लोन के लिए पहली अर्जी आई थी फ्रांस की।
0: मई 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अगुवाई में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था।
1: साल 1955 में पश्चिम जर्मनी नाटो का सदस्य बना था आज ही के दिन।
0: इससे 5 साल पहले यानी 1950 में सुमन घोषणा की गई थी जिसमें यूरोपीय संघ की नींव रखने वाली ऐतिहासिक घोषणा थी और यह महाद्वीप में एकता का मार्ग प्रशस्त करती रही। वहीं बात कर ली जाए 1960 की तो 9 मई का वह दिन था जब अमेरिका में बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियों को वैध करने का डिसीजन लिया गया था और यह पहला देश बना था जहां पर यह कानून लागू हुआ था। और वहीं आज से काफी साल पहले 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनाया गया ताजमहल 22 वर्षों के निरंतर परिश्रम के बाद बनकर पूरा हुआ था आज ही के दिन।
1: साल 2009 में नासा ने चांद पर पानी की खोज के लिए टोही यान भेजा था। और साल 2010 में आज के दिन भारत की वंदना शिवा को विकासशील देशों में महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए साल 2010 के सिडनी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था।
0: आज के दिन उन्हें चुना जरूर गया था लेकिन उन्हें ये पुरस्कार मिला था 4 नवंबर के दिन। दोस्तों इतिहास की गलियों से बाहर निकलते हैं और जो हमारा रिश्ता जोड़ते हैं सुरों की गलियों से।

0: दोस्तों नमस्कार। कार्यक्रम में अब आपसे कर लेते हैं काम की बात, और काम की बात हमारी जिंदगी के रोजमर्रा जो काम है उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ती है और वो जरूरत होती है सब्जियों की। आप सोच रहे होंगे कि सब्जियों की जरूरत का काम की बात से क्या लेना देना। तो दोस्तों अभी का मौसम ऐसा है जब हर सब्जी पूरे वर्ष भर हमें मिलती रहती है, और चाहे कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, सब्जियां पूरे साल मिलती है। और ऐसा कैसे हो पाता है, उसके पीछे कारण होता है कि जो ये सब्जियां होती है वो पूरी तरह पकाई नहीं जाती है, उनको केमिकल के जरिए प्रिजर्व किया जाता है।
1: बिल्कुल। और आज की जो टाइम है, सब्जियां दिखने में भले ही ताज़ी और चमकदार लगती है, लेकिन उनके ऊपर जो कीटनाशक होते हैं, धूल मिट्टी होते हैं और छोटे कीड़े लगे हो सकते हैं, और जो खेती के दौरान फसलों पर कई तरह की दवाएं छिड़की जाती है ताकि कीट ना लगे और पैदावार ज़्यादा हो, तो ये जो दवाएँ हैं सीधे हमारी थाली तक पहुँच जाती है। और अक्सर हम सब्जियों को बस नल के नीचे 2 मिनट धोकर काम खत्म हो गया ये समझ लेते हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। कई बार सिर्फ सादा पानी से धोना काफ़ी नहीं होता।
0: जी हाँ, ये सब्जियाँ हानिकारक केमिकल के प्रयोग से पकाई जाती है और इनका उपयोग हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में इन्हें प्रयोग में लेने से पहले अच्छी तरह साफ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो कीटनाशक और केमिकल्स हैं उन्हें दूर किया जा सके। इन कीटनाशकों का उपयोग सब्जियों को कीट से बचाने के लिए किया जाता है और यह बहुत घातक होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी हाँ, सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि हम सब्जी जब लेके आए बाजार से तो उसे गुनगुने पानी में धोए, और इस गुनगुने पानी में अगर आप थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो सब्जियाँ अच्छे से साफ हो पाएगी।
1: बिल्कुल। और नमक के पानी का जो घोल होता है उससे जो सतह पर लगे कीटनाशक के अंश होते हैं और जो मिट्टी और या छोटे कीड़े होते हैं वो काफी हद तक हटाए जा सकते हैं।
0: जी हाँ, अगर इस गुनगुने पानी में आप 2% बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा मिला देते हैं और उन सब्जियों को 15 से 20 मिनट तक भिगो के रखते हैं, तो 75% जो बैक्टीरिया और कीटनाशक है वो समाप्त हो जाते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल करें तो इसे भिगाने के बाद सादे रनिंग वाटर

0: के नीचे धो सकते हैं।
1: और सब्जियों से पेस्टिसाइड्स को हटाने के लिए भी अगर 3/4 पानी में एक भाग जो है वो सिरका ले लें और सभी सब्जियों को इसमें भिगोकर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दें, तो ये जो घोल है वो भी कीटनाशकों के अवशेषों को हटा देगा और आपकी सब्जियों को साफ और ताज़ा बना देगा।
0: वहीं अगर आप गाजर, आलू, लौकी जैसी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इसे साफ करने के लिए आप एक मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुलायम ब्रश से आप इन्हें रगड़ के साफ कर सकते हैं ताकि इनके ऊपर जो एक वैक्स की परत होती है जो इन्हें चमकदार बनाती है उसे आप आसानी से हटा सकते हैं।
1: और ये जो आसान से तरीके हैं वो बहुत ही काम के तरीके हैं श्रोताओं, और जब भी आप इन सारी चीज़ों से अगर पानी को सब्जियों को धो रहे हैं, जैसे नमक का पानी हुआ, विनेगर का पानी हुआ, इसके बाद में एक काम और करना है, फिर से सादे पानी से धोना है।
0: जी बिल्कुल। और जैसे बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती है सोफिया, जैसे कि लौकी हो गई, तुरई हो गई, खीरा और सेब जैसे फ्रूट हो गए, तो इन सब्जियों के ऊपर भी एक वैक्स की पतली सी परत लगाई जाती है ताकि कि इसे चमकदार बनाए सके। तो इन चीज़ों को तो आप इस्तेमाल करने से पहले इसका छिलका उतार लें, और छिलका उतार कर आप खाते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। वहीं जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं जैसे पालक हो गई, चंदलोई हो गई, मेथी हो गई, इन सब्जियों को आप अगर थोड़ी देर नमक के पानी में रखें और 2-3 बार पानी बदल कर इसे साफ करें तो इसमें से मिट्टी तो निकलेगी ही, साथ ही साथ जो केमिकल्स हैं वो भी हट जाएंगे।
1: बिल्कुल, ये जो तरीके हैं वो आपके स्वाद और बनावट को खराब नहीं करते, बस जरूरत है इनकी सही मात्रा और सही समय की। अगर आप रोजमर्रा की रसोई में थोड़ा सा समय और दे दें तो आपकी सब्जियां पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित होगी।
0: वहीं अगर बात कर ली जाए कि सब्जियों को आप कभी भी साबुन और डिटर्जेंट से ना धोएं, क्योंकि ये जो साबुन और डिटर्जेंट है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बिना छिलके वाली या पैकेट बंद सब्जियों को साफ पानी से धोना बहुत जरूरी है। और एक और ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि सब्जियों को पकाने से पहले धोएं। अगर आप स्टोर करने से पहले धोते हैं तो वो केमिकल उसके अंदर ही रह जाते हैं, इसलिए जब भी आप पकाने से पहले इसे धोते हैं तब सब्जियां आपको बिना केमिकल की मिल सकती
1: तो है। हुई ना श्रोताओं, ये आपके काम की बात। ये आसान तरीका हर रसोई में अपनाया जा सकता है, ये आसान तरीका हर रसोई में अपनाया जाना चाहिए श्रोताओं। ये छोटी सी आदत आपको और आपके परिवार की सेहत के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।

0: श्रोताओं, अब काम की बात तो हो चुकी है, अब बात खास यानी खास बात के सेगमेंट में हम बात करेंगे आज। श्रोताओं, आज का जो दौर है उसमें मोबाइल सिम कार्ड सिर्फ कॉलिंग का साधन नहीं बल्कि हमारी पहचान और हमारी रोजमर्रा की जरूरत का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हालांकि महंगे रिचार्ज प्लान्स के कारण कई लोग टाइम पे रिचार्ज नहीं करा पाते, जिसकी वजह से उनका नंबर जो है वो बंद होने का खतरा बढ़ जाता है।
1: जी हाँ दोस्तों, जब 2016 से पहले की बात करें तो अधिकांश जो टेलीकॉम कंपनियां होती है वो बिना रिचार्ज के इनकमिंग की सुविधा देती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी है। वर्तमान समय में लगभग सभी कंपनियां इनकमिंग सेवाओं के लिए भी एक्टिव प्लान जरूरी मानती है। रिचार्ज खत्म होने के बाद कंपनियां लगातार कॉल और मैसेज के जरिए यूजर को रिचार्ज कराने की सूचना देती रहती है।
0: और इसी के मद्देनजर ट्राई ने कुछ दिशा निर्देश और नियम दिए हैं। इनके अनुसार यदि कोई यूजर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराता है तो उसकी सेवाएं जो है वो चरणबद्ध तरीके से बंद की जाती है। शुरुआत में आउटगोइंग सेवाओं से होती है और बाद में इनकमिंग सेवाएं बंद कर दी जाती है।
1: जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने कुछ नियम स्पष्ट किए हैं। इसमें वैधता समाप्त होने के बाद से

0: से पहले आउटगोइंग कॉल और एसएमएस की सुविधा प्रभावित होती है। कई कंपनियां वैधता खत्म होने के बाद में आउटगोइंग की सेवाएं बंद करती है, लेकिन कुछ मामलों में ये प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी होती है। इस दौरान यूजर को कुछ समय के लिए इनकमिंग कॉल और मैसेज मिलते रहते हैं।
1: अगर यूजर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं कराता है तो टेलीकॉम कंपनी इनकमिंग कॉल और एसएमएस सेवाएं भी बंद कर देती है, और इसके बाद सिम कार्ड केवल नाम के लिए एक्टिव रहता है और उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
0: अधिकतर टेलीकॉम कंपनियां 60 से 90 दिनों तक रिचार्ज होने नहीं होने पर सिम कार्ड को पूरी तरह डीएक्टिवेट करती है। इसका मतलब यह है कि नंबर नेटवर्क से हट जाता है और उस पर कोई सेवा काम नहीं करती है।
1: और यदि सिम लंबे समय तक बंद रहती है तो कंपनी उस नंबर को दोबारा एक्टिव नंबरों की सूची में भी डाल सकती है। ऐसे में आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है वो किसी दूसरे ग्राहक को आवंटित किया जा सकता है।
0: तो दोस्तों, अपने मोबाइल को समय समय पर रिचार्ज करते रहिए और इस जो असुविधा से आप बच सकते हैं।

श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इन नन्हे परिंदों के उस जज्बे को जो हजारों मील का सफर तय कर हमारे मेहमान बनते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, कुर्जियाँ जो हमारे देश में आती है सर्दियों के मौसम में, और इससे हमारा जो संबंध है वो बहुत पुराना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे लोकगीत है वो भी कुर्जा से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पक्षी परदेसी होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि प्रतिवर्ष हजारों लाखों पक्षी मौसम परिवर्तन के समय अपने स्थान को छोड़कर भोजन और आवास की खोज में यह दूरी तय करते हैं। एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ये यात्रा बहुत लंबी होती है, और इन्हीं पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है।
1: और यह दिन श्रोताओं साल में 2 बार मनाया जाता है, 1-2 मई के दूसरे शनिवार और 1 अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ये दोहरी तारीखें पक्षी प्रवास की चक्रीय प्रकृति और उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में उनके अलग अलग प्रवास के समय को दर्शाती है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो वो 2006 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। ये दिन प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और श्रोताओं, भारत में सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च में आने वाले कुछ मुख्य पक्षी हैं। जैसे बात की जाए साइबेरियन क्रेन, ये लगभग 4000 मील का सफर तय कर साइबेरिया से भारत आता है और मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर में। और ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करें तो ये कच्छ के रण और ओडिशा के चिल्का झील में पाए जाते हैं। बार हेडेड गूंज ये दुनिया के सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, जो

0: हिमालय पार कर कर भारत आते हैं। और श्रोताओं, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य जो हमारे हजारों प्रवासी पक्षियों का एक घर है, प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए भारत में कई वेटलैंड्स को भी रामसर साइट्स के रूप में संरक्षित किया गया है।
1: जी हाँ दोस्तों, ये जो पक्षी है वो ना केवल हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए ज़रूरी है बल्कि पृथ्वी के अस्तित्व के लिए भी ज़रूरी है। ये पक्षी प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं, पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं और इनकी सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व है। इनकी सुरक्षा, इनके लिए आवास, जल स्रोत और हरित वातावरण की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हजारों मील का सफर तय करके आने वाले इन विदेशी मेहमानों का स्वागत और संरक्षण हमें ही करना है।

और श्रोताओं, अब बात हमारे स्पेशल सेगमेंट यानी शनिवार की रेसिपी। और शनिवार की रेसिपी में आज हम बताने वाले हैं आपको एक ठंडी ठंडी सी रेसिपी, क्योंकि गर्मी तो बहुत है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो दूध चाहिए हमको 2 कप। हम बनाने जा रहे हैं रॉयल फालूदा रेसिपी। इसके लिए 2 कप दूध चाहिए उबला हुआ, और उसको बाद में ठंडा कर दीजिए। इसके बाद में हम रोज़ सिरप लेंगे 4-5 बड़े चम्मच, सब्ज़ा के बीज 1-2 बड़े चम्मच जो कि 15 मिनट पानी में भिगोए हुए हों। फिर हमें लेना है फालूदा सेवई 1/2 कप उबली हुई। आइसक्रीम चाहिए 2-3 स्कूप, आप चाहे तो वनीला ले सकते हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। कटे हुए मेवे चाहिए बादाम, पिस्ता,

0: काजू, और अगर आप चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं टूटी फ्रूटी, और एक या दो चम्मच जैसा भी आपको स्वाद चाहिए चीनी ले सकते हैं। इसके बाद में जानते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले दूध को उबालना है, उसमें चीनी मिलानी है। जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना है। और जो फालूदा सेवेली है उसको उबाला था हमने, तो उसको अलग रख लेना है। उसमें सब्जा के बीजों को 15 मिनट के लिए पानी में भिगो देना है। अब एक लंबा ग्लास लेना है जिसमें एक दो बड़े चम्मच रोज सिरप डालना है, और जो भीगे हुए बीज है सब्जा के वो डालना है।
1: उसके साथ में आप डाल सकते हैं सेवई की परत, क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है वो, और लेयरिंग बहुत सुंदर दिखती है इसमें, इसलिए आप उबली हुई सेवई की परत डालें, फिर दूध और आइसक्रीम, जो दूध ठंडा मीठा किया है हमने, वो डालेंगे। ऊपर से एक दो स्कूप वनीला या कुल्फी आइसक्रीम डाल सकते हैं, और सबसे ऊपर जो हम डालेंगे वो डालेंगे बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता, टूटी फ्रूटी, थोड़ा सा रोज सिरप, और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये तो बात हुई फालूदा की, लेकिन आप इसकी रेसिपी में जो ये सेविंग है वो आप घर में भी बना सकते हैं। गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में फालूदा बड़े चाव से खाया जाता है, और इस बाजार से आप इसे ले सकते हैं, लेकिन घर पर भी आराम से आसानी से बना सकते हैं। घर पर आप इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ कॉर्न फ्लोर, और 35 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। एक टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर में बर्फ पानी के छलने के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। एक कप पानी में पानी के साथ कॉर्न फ्लोर को मिलाइए, उबाल कर आँच को धीमी कर दें और लगातार चलाते रहें। धीरे धीरे जब ये ट्रांसपेरेंट होने लगेगा तो इसे आँच से उतार लेंगे। अब कॉर्न फ्लोर पेस्ट को छलनी में डालना है, चम्मच की मदद से दबाना है और ठंडे पानी में इसके टुकड़े गिरने देना है। 30 मिनट के लिए ठंडे पानी में छोड़ देंगे और इसे छान लेंगे, तो ये आपका फालूदा घर में तैयार हो जाएगा। और इस तरह से आप घर में ही फालूदा बना सकते हैं, और रॉयल फालूदा की जो ये रेसिपी है उसका आनंद ले सकते हैं।

0: दोस्तों अब बात उनकी जिन्होंने अपने जीवन से एक रोशनी सी फैला दी थी, यानी आज के दिन जिनका जन्म हुआ। स्नेहमयी चौधरी 1935 उन्नाव उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर ली जाए, पूरा पाठ गलत, चौतरफा लड़ाई और हड़कंप इनकी प्रसिद्ध रचना रही। वहीं आज ही के दिन बिजनौर उत्तर प्रदेश में 1930 में जन्मे रविन्द्रनाथ त्यागी, जो कि लेखक, व्यंग्यकार और कवि हैं, और उनकी प्रमुख रचनाओं में खुली धूप के में नाव पर पहली संग्रह थी, वहीं बसंत से पतझड़ तक उनकी आखिरी संग्रह थी जो उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। और आज ही के दिन 1866 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की, शिक्षा और सामाजिक सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, हिंसा के बजाय बातचीत और संवैधानिक तरीकों से विश्वास रखने वाले नरम दिल के अहिंसावादी नेता वे रहे। और उनका मानना था कि भावी भारत दरिद्रता, असंतोष का नहीं बल्कि उद्योगों, जागृत शक्तियों और संपन्नता का भारत होगा। वहीं आज ही के दिन उदयपुर के महाराणा प्रताप का भी जन्म हुआ 1540 में कुंभलगढ़ में, और सिसोदिया वंश के राजवंश के राजा थे। उनकी वीरता, दृढ़ प्रतिज्ञा और उन के कारण उन्हें आज भी सम्मान याद किया जाता है। शौर्य भूमि का मेवाड़ मुकुटमणि उन्हें कहा जाता है, और इतिहास का सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, और उनकी वीरता की कथाएं आज भी लोगों में जोश भर देती है।
1: और आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं श्रोताओं, हिंदी के जाने माने निबंधकार जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंध रखने वाले कई निबंध लिखे। उनके निबंधों की अगर हम बात करें तो उनमें है दीप जले शंख बजे, कारवा आगे बढ़े माटी हो गई सोना, और आज हम याद कर रहे हैं शेरपा तेंजिंग के नाम से मशहूर तेंजिंग नॉर्गे को, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतेह पाने वाले वो पहले भारतीय बने थे।
2: प्यार बढ़ा के मैं एक बादल आवारा।
1: और आज हम याद कर रहे हैं श्रोताओं जाने माने पार्श्व गायक और फिल्म अभिनेता तलत महबूद, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वो एक गजल गायक के रूप में भी उन्होंने बहुत ख्याति अर्जित की थी। श्रोताओं, शुरू में उन्होंने तपन कुमार के नाम से गाने गाए, और गायक और अभिनेता बनने की चाहत के लिए 1944 में वो कोलकाता आ गए। और श्रोताओं, मशहूर संगीतकार नौशाद ने भी तलत महबूद को अपनी फिल्म बाबुल के लिए गाने का मौका दिया था, और उन्हीं की आवाज में सुनते हैं हम ये गीत।

0: पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं, अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा।
1: श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का अंक बस यहीं तक। आज इस अंक में मैं थी आपके साथ अर्चना
2: और मैं सोफिया। इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

है कार्यक्रम लोक संगीत। ये पहली लोक रचना तुलसा राम की आवाज में।

श्रोता अभी सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम। नमस्कार, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं।

प्रकाश चंद्र शर्मा को अभी आप सुन रहे थे। लोक संगीत के कार्यक्रम में अगली रचना सुनते हैं भंवरलाल राव की आवाज़ में।

नेक मोहम्मद की आवाज़ में ये रचना अभी आपने सुनी, और आइए अब सुनते हैं फतेह कुमारी व्यास को। आकाशवाणी जोधपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।

ये था कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत का ये पहला गीत

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं साज आवाज और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे परिणीता फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

0: स्वानंद किरकिरे के बोल और शांतनु मोइत्रा का संगीत।
1: ला ला ला, हे हे हे, से यो मा।

फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवा रहे हैं अब चल मेरे भाई फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे मेट्रो फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है सोहम ने, बोल लिखे हैं सैयद कादरी, संदीप श्रीवास्तवा और अमिताभ वर्मा ने, प्रीतम ने दिया है संगीत। तो आपको सुनाते हैं ये अगला गाना।

आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है नुसरत फतेह अली खान ने, कैलाश शर्मा की बोल और संदेश संध्याल का संगीत। तो आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत में अब आप सुनेंगे चेन्नई एक्सप्रेस से ये गाना, जिसे गाया है सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह ने, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी कसे क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: कमर्शियल ब्रेक के बाद अब आप सुनेंगे अंधाधुन फिल्म से ये गाना जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने जयदीप सहानी के बोल

फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे हीरो फिल्म से ये गाना, जिसे आवाज़ें दी हैं सलमान खान ने, अल्फाज लिखे हैं कुमार ने और संगीतबद्ध किया है अमाल मलिक ने।

किस्मत कनेक्शन फिल्म से गाना आप सुनेंगे आतिफ असलम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, सैयद कादरी के बोल, प्रीतम का संगीत।

फिल्म संगीत में आप सुनेंगे यार यार टू से ये गाना, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, मनन भारद्वाज के बोल और संगीत।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश है आई हेट लव स्टोरी फिल्म से। श्रेया घोषाल और सोना मोहपात्रा की आवाजें, कुमार के बोल और विशाल शेखर का संगीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं लोक गीतों से सजा कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत का आरंभ करेंगे अनुराधा प्रकाश की आवाज के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत का आगाज करेंगे परेश पाहुजा की आवाजों के साथ।

इश्क सोच के कीता, की कीता? दिल देके दिल लैण दी लालच करी तू लिया, जे तूने प्यार भी लालच नाल कीता

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर सूर्य नगरी केंद्र पर कार्यक्रम सुगम संगीत गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं जुबीन नौटियाल की आवाज में ये गीत।

सुगम संगीत गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाएंगे जुबीन नौटियाल की आवाज़ में ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ पांच अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं।

0: राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों के लिए कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणा जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भैया आपा खेती बाड़ी रा काम काज करे, यहाँ लाल दिना आपने भात भातरी सब्जियारी पैदावार बारे में जानकारी दे रही, जीव टिंडा रे बारे में जानकारी दे रही, लौकी रे बारे में जानकारी दे रही ही, तोरई री फसल री भी जानकारी दे रही आपने, भिंडिया रे बारे में भी जानकारी दे रही ही, बैंगन री उन्नत खेती रे बारे में लाल दिना आपा जानकारी दे रही। हम आपा बात करा कि भाई कई किसान भाई है जो आप रे लोगो लग जिकी सब्जी री पैदावार है लेवता रहे, बारह महीना जिकी फसल है वह आवती रहे, जो आप भिंडी री बात करा, आप तोरी री बात करा, साथ साथ आला जिकी है ए भी बारह महीना आया करे, और जिका रींगणा बैंगन है ए भी बारह महीना आया करे। तो कई किसान भाई जीव हमें पौध तैयार करेला, आगे बावेला, बरसात में बहुत ही बढ़िया मात्रा मैंने बैंगन री फसल लो उत्पादन वेला। जी आप बात करा कई किसान भाई पहला सु बैंगन री जी की फसला है।

दे राखी है और वटे कटई फूल भी आ रिया है, कटई फल भी लाग रिया है। जनवरी फरवरी महीने भी बैंगन किसान भाई आपने पाया है, तो हमें बात आवे कि भाई जिकी फसल आपने खेत्र में खड़ी है उन खड़ी फसल महीने कई कीट भी लाग जाया करे, रोग भी लाग जाए, तो आप जानकारी लेवा के भाई बैंगन री फसल महीने कीट एवं रोग रो जो नियंत्रण है वो आप किन तरह से राख सका। बैंगन री पैदावार महीने तना और फल छेदक जी को है ओ रोग जी को लाग जाया करे, इन रोग से और जो को कीट है इन फसल ने काफी नुकसान जी को है वो पहुंचाया करे। जो को लारू हुए वो ऊपरली जी की पत्ती है उठे जुड़ी रही उन्होंने कारण उठ कहीं है कि एक छेद बना पुरान उठ वो माय बढ़ जाया करे और अंदर कहीं करे वो उन बैंगन रे पौधा ने खाव तो रहे जिनसो कहीं वह के टेनी रो जी को विकास है रुक जा, आगलो जी को भाग है वो मुरझा जा हूक जा, फल आवन माते और जो को पिल्लू है इन महीने छेद रा जी का गुद्दा और बीज ने खा जाया करे। तो इनकी रोकथाम वास्ते आप कही करा कि समेकित कीट प्रबंधन जो उपाय कारगर जो है वो आपने करना चाहिए और जिकी भी जिकी वह प्रभावित जिकी टैनी है शाखा है विना कीट से तोड़ पर अपने नष्ट कर देना चाहिए।

फसल माते फेरोमोन पॉस भी आपने लगा लेना चाहिए ताकि कीट रो जो प्रभाव है उन्हें आप कम कर सका। फलाने माते कीट रो प्रकोप मान लो जो दिखे तो उठे आपने कहीं करना के नीम रे जिका बीज है उन बढ़िया रस जिको है 4% दर सु घोल बना और 15 दिन रे अंतराल माते फसल मात छिड़काव आपने करना चाहिए। बैंगन री फसल महीने जेसिड्स भी हो जाया करे ओ हरा रंग रा जिका कीट है ए पतियारे निचली सतह माते लाग प्राण जिका है उन्डो जी को रस है चूसता रिया करे जिन कारण कहीं वे के पत्तियां पीली पड़ जा और पौधा जी का है बिल्कुल कमजोर पड़ जा तो इनरे रोग रे नियंत्रण वास्ते आपने कई करना चाहिए के रोपयू पहला जी का पौधा जी की जड़ा है उनरे मैंने कौन फिडरी जी की दवा है वह 1.2-1.5 मिलीलीटर प्रति दर रे हिसाब से घोल बना और 2 घंटा तक आपने डुबोनो चाहिए और विन बाद मैंने आपने बीज भावना चाहिए। बैंगन री फसल मैंने एपिलेकना बिटल भी होया करे और जो कीट है पौधा रो जी को प्रारंभिक अवस्था है वोट बहुत ज्यादा मात्रा में हानि पहुंचाया करे ए पतिया ने जिका खार छलनी सदृश बना दे आप एकदम और इंडे प्रकोप सु कहीं वे के पूरी फसल इज बर्बाद हो जाया करे तो इंडी रोकथाम वास्ते आपने कई करना चाहिए। कार्बराइल 2.0 ग्राम प्रति लीटर या पडान जी को है वो 1.0 ग्राम लीटर 10 दिनारे अंतर माथे प्रयोग आपने करना चाहिए। फल सड़न री भी समस्या इनमें आया करे फंपूद रे कारण वो बीज जनित रोग हुआ करे और वो प्रभावित हो जावे तो उनसे कहीं वे के शुरुआत में मैंने छोटा छोटा गोल जी का भूरा धब्बा जी का है वे पतियार माते बन जाया करे और बाद में मैंने पुंज को आकार है माते और काली पतियां धब्बा जी का है पतियार जी का आड़ा पाड़े किनारा वे उठा आप दिखा करे जिनसे कहीं वे के रोगी पतियां पीली पड़ पड़ी सूख जावे और फला माते धूल कणारे समान जी को भूरी रचना है अपने दिखने लग जाया करे जिकी बाद में बड़ परीन काले धब्बा रे रमाइने भी आ हो जाया करे। इन रोग ने नियंत्रण वास्ते कई कर सका आपा के 22-3-2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज आपा बीज उपचार करन बुआई करा तो फसल रमाते जी को प्रभाव जी को है वो हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े और जो रोग है वो खत्म हो जाए करे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई बैंगन री फसल महीने कीट एवं रोग प्रबंधन रोग काम काज आप किन तरह से कर सका कृषि जगत प्रोग्राम रोजी को भगत है वो पूरे वेरियो है दिनेश राणे जाने शेख गिराओ राम राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स और FM बैंड 102.1 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाटिका सुनने वाली सभी सखियों को उनकी प्यारी सी सखी स्वप्नीला और
1: हंसा विश्नोई का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखियों, हमारे इस प्रोग्राम की परिकल्पना और संयोजन किया है सफलता चारण ने।

0: तो हंसा, आज ना मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि गिर कर उठ जाना साहस है, आंधी में दीप जलाना साहस है, डर के आगे जीत खड़ी है, हर मुश्किल से प्रीत बड़ी है, तू कदम बढ़ा राह बनेगी, बस रुक ना जाना ही साहस है।
1: साहस है बिल्कुल। संसार के जितने भी काम है ना स्वप्निला, वो सारे बड़े या छोटे कैसे भी हों, वो साहस के बिना तो होते ही नहीं। संसार के जितने भी महापुरुष जिनको आज हम याद करते हैं, वो उन्हें हम उनके साहस से ही याद करते हैं, क्योंकि साहस के कारण ही उन्होंने बड़े से बड़े काम किए हैं। और अब देखिए, हमारे देश का जो इतिहास बना है वो भी साहस से ही बना है। जैसे

0: हम किसी का भी नाम लेते हैं, जो भी हमारे वीर हैं, शिवाजी हो, चाहे रणजीत सिंह हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, या फिर महाराणा प्रताप हो, जिनके भी हम नाम लेते हैं, वो सब कुछ उन्होंने जो भी काम किया वो सब साहस से ही किया है।
1: बिल्कुल हंसा, जब राह कठिन हो जाती है और दुनिया भी डर दिखलाती है, तब जो आगे बढ़ जाता है वही साहस है। जब हार मिले और रुके नहीं, मन के दीपक जिसके बुझे नहीं, अंधियारे में जो चमक उठे, साहस वही कहलाता है। इसलिए साहस को डर का अभाव तो नहीं कह सकते, बल्कि डर के बावजूद जो सही कदम उठाने की ताकत रखता है और जिसमें फिर से गिर के उठने की हिम्मत होती है, वही
0: वही
1: साहस
0: साहस है
1: कहलाता है।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही साहसी लोगों ने अपने देश की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, और हमेशा यही भाव रखा कि हमारा देश विजयी रहे।

0: स्वप्निला, ये जब हम गीत सुनते हैं तो अपने मन में मुझे तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि हम ऐसी भूमि में पैदा हुए हैं जिसने कई वीरों को, कई रत्नों को जन्म दिया है। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप। सिर कटे धड़ लड़ता रहेगा, जब तक एक एक सांस बाकी है मेवाड़ नहीं झुकेगा। और ये कहने वाले महाराणा प्रताप साहस की प्रतिमूर्ति थे।
1: बिल्कुल हंसा, महाराणा प्रताप एक महान वीर योद्धा थे। मातृभूमि के गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक थे। वो केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि वे साहस, त्याग और देशभक्ति और आत्मसम्मान के जीवित मिसाल थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपने धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए कभी झुकना नहीं चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और वैसे भी देखा जाए तो महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही वीरता, आत्मसम्मान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वे केवल मेवाड़ के राजा नहीं थे, और बल्कि वो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के रक्षक थे। और उनका जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्र प्रेम की अनुपम मिसाल है। वो अत्यंत ही वीर, दयालु, स्वाभिमानी और न्यायप्रिय शासक थे, जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। महाराणा प्रताप ने हंसा कभी भी है ना मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार नहीं की। वे अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करते थे, अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझते थे, कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जनता का साथ नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा सिंह की भांति लड़ते थे और दुश्मनों से कभी डरते नहीं थे, बल्कि अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहते थे। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, वो कभी भी समझौता नहीं करते थे। वो अपनी स्वतंत्रता के साथ ही रहते थे, और स्वतंत्रता से ही अपनी देशभक्ति की अद्भुत मिसाल उन्होंने पेश करी हम सबके सामने।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। अकबर जहाँ पूरे भारत पर अधीन अब उसको देश को करना चाहता था, वहीं पे उसने सभी कई राजपूत राजाओं ने संधि कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेवाड़ का सिर कभी नहीं झुकेगा। अच्छा, अकबर ने 4 बार शांति दूत भेजे जिसमें मानसिंह और राजा भगवान दास भी थे, लेकिन प्रताप ऐसे वीर थे, ऐसे शेर थे जो बिल्कुल भी नहीं झुके। इनके राज्याभिषेक की बात करें तो महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद में इनके छोटे भाई जहाँ बनने चाहते थे वहाँ पर मेवाड़ के सरदारों ने इन्हें योग्य माना, और वो थे ही इतने योग्य। उनके बारे में कहा जाता है कि बचपन से ही उन्होंने ये सोच रखा था, क्योंकि वो युद्ध कौशल में भी अग्रणी दिखाई देते थे और एक आदर्श संगठनकर्ता दिखाई देते थे। धर्म के लिए, देश के लिए वो अपना बलिदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसीलिए बाकी जितने भी सरदार थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये ही राजा बनेंगे। तो इस तरह से सिसोदिया वंश के 12वें राजा बने महाराणा प्रताप।
1: बिल्कुल हंसा, और जब कई राजाओं ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया था, तब तो महाराणा प्रताप अकेले ही वीर थे जिन्होंने स्वतंत्रता का मार्ग चुना था, और उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कठिन संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी।
0: बिल्कुल
1: उनकी देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उनके जीवन के प्रत्येक संघर्ष में दिखाई देती है।

0: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारीवाटी का और हम हैं आपके साथ हंसा और स्वप्नीला। तो स्वप्नीला, इतने गौरवशाली व्यक्तित्व के धनी थे महाराणा प्रताप कि उनका उनका जो कद था वो ही 7 फीट 5 इंच का था और उनका जो वजन था वो 110 केजी था। सोचिए, और इसके साथ में वो 80 केजी का तो 80 किलो का तो वो भाला लेकर चलते थे और आसपास उनके 2 तलवारें होती थी जिनका वजन भी कहते हैं कि 208 केजी था। और ऊपर से जो बख्तर बन जब वो युद्ध में जाते होंगे तब वो जो पहनते होंगे
1: कितना भारी कवच।
0: वो सब, हाँ, वो लोहे के हैं। जैसे हम अभी म्यूजियम में जाते हैं तो देखते भी हैं वो सब चीजें। तो अब आप सोचिए कि वो अपने आप में एक चलते फिरते, कहना चाहिए कि एक अजूबे तो नहीं कहना, पर कितने वीर,
1: योद्धा
0: कितने
1: टाइप।
0: योद्धा, उनके उनके उनकी चाल कैसी होगी, उनकी आंखें, उनकी उनके बोलने का अंदाज, वो सब कुछ कितना अद्भुत रहा होगा।
1: बात तो सही है।
0: और अद्भुत ही है उनकी वो उनका वो युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध।
1: बिल्कुल, हल्दी घाटी को हम कैसे भूल सकते हैं हंसा। जी हाँ, हल्दी घाटी इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ की मिट्टी का रंग तो हल्दी जैसा पीला है ही, लेकिन उस हल्दी घाटी पर एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया था।
0: और ये घाटी सिर्फ 5 किलोमीटर लंबी और बहुत संकरी थी। 2 तरफ ऊंचे पहाड़ थे, एक तरफ बड़ी मुगल सेना थी और एक तरफ प्रताप की सेना। और ऐसे कहते हैं कि गुरिल्ला युद्ध जो है वो वहीं से आरंभ हुआ। तो क्योंकि हल्दी घाटी पीली मिट्टी जैसी थी और ये गोगुंदा से 17 किलोमीटर दूर है, अरावली की सकरी घाटी है जिसका चुनाव किया गया। और अकबर क्योंकि चाहता था कि हम मैं पूरे भारत पर अधीनता स्वीकार कर लूं, लेकिन प्रताप ने ऐसा नहीं होने दिया। तो उन्होंने 4 बार दूत भेजा प्रताप के पास कि आप मेरी अधीनता को स्वीकारें। और उसके बाद मानसिंह स्वयं आए मिलने के लिए उदयपुर, लेकिन इन्होंने मानसिंह के साथ भोजन भी नहीं किया। इनके अनुसार

0: वो विदेशी के साथ मिले हुए हैं तो मैं ऐसा काम उनके साथ
1: नहीं
0: नहीं करूंगा।
1: करूंगा। हाँ,
0: अब इस बात को उन्होंने अपमान माना और इसी उसमें मेवाड़ पर हमला बोल दिया गया। तो स्थान वो जो था वो बहुत ही ऐसा था, अच्छा मेवाड़ की सेना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी थी, कहते हैं कि कुल 20,000 लोग थे और उधर मुगल सेना में 80,000 के करीब थे। लेकिन ये जो महाराणा प्रताप के साथ जो भील थे वो बहुत अच्छे तीरंदाज थे, और इसके अलावा तीरंदाज होने के साथ में इनमें एक चीज़ और थी कि इनकी जो भाषा थी, इनकी जो बोली थी, उस बोली के जरिए ये सांकेतिक भाषा इस्तेमाल करते थे और वो इनके पक्ष में जाती थी। तो ये सारी भाषा जो ये जो लोग थे, मुगल जो सेना थी, वो समझ नहीं पाती थी और इसीलिए ये युद्ध अनिर्णय की स्थिति में रहा।

कितनों के महल मसान हुए, कितने परवाने अमर दुर्ग इस पगड़ी पर बलिदान हुए, इस ओर हमारे प्रताप ने, इस ओर हमारे प्रताप ने लोहू के सागर बहा दिए, लोहे के चने बहादुर।

तो स्वप्नीला, जब ये युद्ध चल रहा था, ये युद्ध शुरू हुआ था 18 जून 1576 में, हुआ था उस दिन, और ऐसा कहते हैं कि 3 घंटे तक भीषण लड़ाई हुई थी। और अकबर की तरफ से मानसी ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, और महाराणा प्रताप खुद चेतक पर सवार थे। और ये माना जाता है ना कि राजपूत परंपरा में माना जाता

0: है कि सेनापति यदि मर जाए ना तो सेना बिखर जाती है। इसीलिए मानसिंह जो हाथी पर बैठा हुआ था उस पर चेतक ने अपने पैर रखे और प्रताप ने जोर से भाला फेंका, लेकिन भाला जो था वो बदकिस्मती से मानसिंह को नहीं लगा बल्कि महावत को जा लगा। महावत मरा लेकिन मानसिंह बच गया। इतने में ही एक मुगल ने चेतक के पैर को काट दिया। अब ये मौका था जब झालामान जो थे वो इनके पक्ष में थे, किसके पक्ष में, प्रताप के पक्ष में थे, और उन्होंने कहा, उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं प्रताप हूं। तो पहले क्या होता था कि आजकल की तरह सोशल मीडिया तो था नहीं, तो कौन प्रताप है जानते नहीं थे। तो जब उसने झाला जी ने चिल्लाकर कहा मैं प्रताप हूं, तो सभी लोगों, सभी मुगल सेना का ध्यान उनकी तरफ गया और इस तरह से उनको मार दिया गया। जब वो वीर गति को प्राप्त हुए तो इतना इतना ही समय था कि प्रताप को वहां से निकाल लिया गया। और उसके बाद में सिर्फ मदद झाला ने ही नहीं की बल्कि भीलों ने भी की।
1: बिल्कुल। और महाराणा प्रताप और भील समुदाय का रिश्ता जो था ना हंसा, वो राजा और प्रजा का तो था ही नहीं, वो ऐसा था जैसे दो साथी लड़ाकू का रिश्ता होता है ना, वैसा था। तो मुगलों से लड़ाई में भीलों ने भी बहुत साथ दिया, जो इतिहास में मिसाल बन गया।
0: हाँ, और ये रिश्ते की शुरुआत पता है यहाँ से नहीं हुई, उससे पहले भी बप्पा रावल जो 8वीं सदी में राजा बने थे उन्होंने ही, उनने परंपरा निकाली थी कि मेवाड़ के हर महाराणा के राज तिलक पर भील सरदार आएगा और अपने अंगूठे का खून निकाल कर उनका
1: उनका
0: तिलक
1: तिलक।
0: करेगा।
1: हाँ
0: यानी भील के बिना मेवाड़ का राजा अधूरा था और परम प्रताप जी ने भी इस परंपरा को निभाया था।
1: बिल्कुल। और प्रताप को तो भीलों का वन पुत्र कहते थे, भील उन्हें कीका यानी बेटा कहकर बुलाते थे।
0: अच्छा, अकबरनामा में अब्दुल फजल ने लिखा है, ये अकबर ने जो अपना अपना परिचय लिखवाया है, अपनी जीवनी लिखाई है, उसमें अबुल फजल ने लिखा है कि पहाड़ों पर जो जंगली लोग थे वो तीर इस तरह चलाते थे कि मौत बरस रही हो, और इसी बरसी हुई मौत से ही ये जो युद्ध था वो युद्ध निर्णायक स्थिति में नहीं रहा। अच्छा, एक और बहुत भावुक किस्सा आता है इसमें कि एक बार प्रताप जो थे वो जंगल में भूख से बेहाल थे, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध के बाद में अपने आप को वहां नहीं रखा था। कहाँ, अपनी जो ये जो होता है उनका राजमहल, उस राजमहल में नहीं रखकर, और इन्होंने रखा था अपने आप को जंगलों में कि मैं अब राजा नहीं रहा, यूं सोच के। तो उसकी बात करेंगे, पर उससे पहले सुनते ही गीत।

0: तो हंसा, हम बात कर रहे हैं हल्दी घाटी युद्ध की, और हम कैसे भूल सकते हैं उस युद्ध के अंदर उस महान घोड़े को जिसके बारे में कहा गया है कि नीला घोड़ा शान मेवाड़ की वीरों का अभिमान था, राणा के हर संकट में चेतन ढाल समान था।
1: राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक

0: से बाघिली लेकर सवार उड़ जाता था।
1: बिल्कुल हंसा, इतिहास में चेतक को केवल अश्व नहीं बल्कि साहस, स्वामी भक्ति और अद्भुत वीरता का प्रतीक माना गया है। और हल्दी घाटी में चेतक ने जो पराक्रम दिखाया वह आज भी लोगों के हृदय में अमर है।
0: बिल्कुल अमर है। अब देखिए ना, जब युद्ध के समय उसका एक पैर घायल हो गया, कट गया, और उसी तीन टांगों पर वो 5 किलोमीटर दौड़ कर गया और 26 फीट नाला कूदा उसने अपने स्वामी को लेकर, प्रताप को लेकर। और इसीलिए आज चेतक स्मारक बनाया, और कहते हैं कि प्रताप ने चेतक का दाह संस्कार भी अपने हाथों से किया था। और ये जिसे पार करते समय उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, ये एक विश्व में अनूठा उदाहरण है ना सुप्रीला?
1: बिल्कुल। और आपको पता है हंसा कि चेतक एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा था, मतलब वो मारवाड़ी घोड़े जो राजस्थान की शान माने जाते हैं, उनकी पहचान उनके अंदर के मुड़े हुए जो कान है उनसे होती है। ये नस्ल अपनी तेज गति, सहन शक्ति, युद्ध क्षमता और मालिक के प्रति निष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ी घोड़े जो होते हैं वो कठिन रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं और युद्ध में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। और कहा जाता है कि जो चेतक का रंग था वो नीला या हल्का आसमान जैसा मिश्रित एकदम धूसर सा था, और इसी कारण लोक गीतों और कविताओं में भी उसे नीला घोड़ा भी कहा जाता है।
0: एक अनूठा विश्व में उदाहरण कि एक मूक प्राणी ने किसी इंसान की तरह ही साहस, निष्ठा और वफादारी दिखाई। और आज भी चेतक का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, उसके अद्भुत पराक्रम को, उसकी असाधारण स्वामी भक्ति को याद किया जाता है।

0: हुआ उसके बाद प्रताप का जो पूरा परिवार, महाराणा प्रताप जी का परिवार, वो सब जंगलों में आ गया और 25 साल जंगल में रहे, भील उनके कुटुंब बने। और आप ये देखो कि जब उनको भूख लगती थी तब भील की माँ जो होती थी वो अपने बच्चे का अनिवाला निकाल कर प्रताप जी के बेटे अमर को दे देती थी। रात होती तो वो भील युवक पहाड़ों पर मशाल लेकर के पहरा देते थे ताकि अगर मुगल आए तो सीटी बजाकर उनको खबर दे दे। और भीलों ने अपने तीर कमान और भाले भी महाराणा प्रताप को दे दिए, बोले आप लड़ो हम आपके तीर बनेंगे।
1: बनेंगे। और एक बहुत ही ऐसी घटना आती है कि जंगलों में रहते वक्त एक दिन उनकी बेटी के हाथ से जो घास की रोटी वो खाते थे वो बिलाव झपट कर ले गया और बिल्ली रो पड़ी। तो ये सब प्रताप देख रहे थे, तो उनका जो कठोर हृदय है वो भी टूट गया और उन्होंने उस समय अकबर को संधि पत्र लिखना शुरू किया। लेकिन इस दौरान ही उनके पास पृथ्वीराज राठौर का एक पत्र आया और वो पत्र था, पटको मूछा पातशाह के पटको निज तन कर तार, थे राखो हिंदवाण महाराणा सिर कटिया। यानी अकबर अपनी मूछ नीची करे या मैं अपना सिर काट दूं, आप हिंदुस्तान की लाज रखिए। ये पत्र पढ़कर प्रताप फिर से खड़े हो गए और उसके बाद उन्होंने धैर्य बना लिया कि मैं मेवाड़ का ध्वज कभी भी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की वो भला उस ध्वज को कैसे झुकने देगा। प्रताप ने कहा, तुरक कहासी मुख पतो इन तन सू इकलिंग, मतलब तुर्क मुझसे मुझे मुखिया कहें, इससे अच्छा मेरा शरीर एक लिंग जी को समर्पित हो जाए। तो इस तरह से प्रताप ने अपनी ये बात मानी और अपने जीवन में सदैव विजयी रहे।
0: बिल्कुल हंसा, और इसलिए तो कहा भी गया है कि मेवाड़ केसरी देखो चलता अरिदल में भूचाल उठा, राणा प्रताप के रणगर्जन से दुश्मन का हर जाल टूटा। घास की रोटी खा ली लेकिन माथा कभी झुकाया ना, मातृभूमि की रक्षा खातिर जीवन पूरा बिताया था।

0: तो स्वप्नीला, ये जो संघर्ष था महाराणा प्रताप का, वो 25 वर्ष तक चलता रहा और उन्होंने मेवाड़ का एक हिस्सा ले भी लिया। हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको हार नहीं माना गया, वह तो प्रताप के स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। और अकबर ने जब कभी प्रताप को सीधे नहीं हराया था, फिर जब प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर को मिली तो वो कहते हैं कि वो रो पड़ा। उनके एक दरबारी थे कवि दुरसा आड़ा, उन्हें लिखा है कि अस लेगो अण दान पाग, अस लेगो अण नामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो घुरवामी। मतलब हे प्रताप, तू अपनी पगड़ी को बेदाग ले गया, तू बिना झुके बिना अधीनता स्वीकार किए चला गया। तो हम ऐसे प्रताप को नमन करते हैं। और ये जो वीर रस की कविताएं हम सुनते हैं ना, ये वीर रस की कविताएं युद्ध के समय सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी।
1: बिल्कुल हंसा, और इतिहास के गौरवशाली पलों को जीवंत करती है, हमें रूढ़ियों को चुनौती देने की प्रेरणा देती है। हमारे मन में यही कविताएं वीरता, राष्ट्रभक्ति और साहस का संचार करती है।
0: और कहा गया है ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत। तो यदि योद्धा सुस्त है तो वो कैसे विजयी बनेगा? उस योद्धा का मनोबल बढ़ाने के लिए वीर रस के गीत गाए जाते हैं, और सिपाहियों का, ताकि सिपाहियों में पराक्रम रहे, उनका धैर्य बना रहे, उनकी निष्ठा का भाव बना रहे और ये बढ़ता भी रहे।
1: ताकि वो माटी के लिए प्राण न्यौछावर करने
0: हाँ
1: को तैयार हो जाए।
0: हाँ
1: और
0: तो
1: सिर्फ कविता ही नहीं है, बल्कि शौर्य गाथाएं भी हैं जो वीरों में जोश भरने का काम
0: काम करती
1: करती
0: हैं,
1: हैं।
0: और ये वीर रस का भाव निडरता से शत्रुओं का सामना करने को प्रेरित करता है, या हम कहें कि ये वीर रस के जो काव्य हैं वो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है।

0: ये जो वीर रस से भरी हुई कविताएं हैं, इनको हम अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं और ऐसा लगता है ये हमेशा कालजयी रहेंगी। जब ये लिखी गई थी, जितनी शिद्दत से उनको लिखा गया था, वैसे ही ये आज भी लगती हैं, है ना सुप्रीला?
1: बिल्कुल, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो झांसी की रानी लिखी, वो तो अभी तक सबके मुंह पे, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक के।
0: चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लोहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो
1: झांसी
0: झांसी वाली
1: वाली रानी
0: रानी
1: थी।
0: थी। आज भी बच्चे इसे स्टेज पर दोहराते हैं, बोलते हैं, और हमारी पाठ्यपुस्तक में आज भी आती है। तो ये हमारा जो साहित्य है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत समृद्ध है, और कहते हैं ना कि जो साहित्य होता है स्वप्निला, वो तो समाज का दर्पण होता है, तो सरलता से सबको आकर्षित भी कर लेता है अपनी तरफ।
1: बिल्कुल आंसर।
0: और जब ये वीरों की बात हम करते हैं तो एक मानव मन को एक संबल मिलता है, हमको बांधे रखता है साहित्य, और जब क्योंकि वो हमको सम्मोहित करता है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसीलिए उसमें जो भी लिखा है, तो वीर रस की यदि बात आएगी तो वो हमारे अंदर अपने आप ही उसको पढ़ के ऊर्जा भर जाएगी। और इसी तरह से देखा जाए तो सबसे पुराने कवि जो थे, चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान रासो लिखा है, वो
1: हाँ।
0: तो थे ही थे। उसके बाद रीतिकाल में कवि भूषण थे, उस समय कहा जाता है कि श्रृंगार रस से भरी हुई कविताएं लिखी जाती थी, लेकिन भूषण ने वीर रस की से कविताएं लिखी, और बहुत सुंदर उनकी कविताएं थी। और ये जो लिखने वाले लोग थे, ये क्या करते थे कि राजाओं के अंदर जोश भरने का काम करते थे। इनकी जो कविताएं होती थी वो उस समय युद्ध के समय जाते समय इनके बहुत काम आती थी, जैसे अभी हमने बात की।
1: सुभद्रा कुमारी चौहान की ऐसी रामधारी दिनकर भी थी।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: और उसके
1: उनको
0: बाद
1: कैसे
0: में
1: भूल सकते हैं।
0: बिल्कुल आजादी के समय के कवि और राष्ट्र कवि जिन्हें हम कहते हैं, तो इनकी कविताओं में भी हमको ओज दिखाई देता है, एक विद्रोह, एक आक्रोश दिखाई देता है, और क्रांति की बात तो उस समय थी, अंग्रेजों को भगाना था, साथ में हमारे देश को भी सुधारना था। तो इनकी जो कविताएं हैं, उनके जो अंश हैं, वो आज सबसे ज्यादा भाषण में उपयोग लिए जाते हैं। आज भले ही हम कहते हैं सोशल मीडिया में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे नए कवि आ गए हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी जो कविताएं हैं, वो चाहे रश्मि रथी इनकी काव्य था, संग्रह था वो हो, या परशुराम की प्रतीक्षा हो, कुरुक्षेत्र हो, उसकी उसकी जो उसके काव्यांश आज बहुत सारी जगह इस्तेमाल
1: हाँ,
0: होते
1: वो
0: हैं।
1: रश्मि रथी की दो लाइन तो मुझे भी याद आ रही है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में।
0: खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़,
1: और मानव जब जोर लगाता है।
0: पत्थर पानी बन जाता है।
2: देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए।
3: भारत ये

सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, है मुझे सौगंध भारत भूलू ना एक क्षण तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे, युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए।

0: तो सखियो, आज हम बात करे थे महाराणा प्रताप की, जिनकी त्याग, तपस्या और वीरता का वो एक अद्भुत अवतार थे। महाराणा प्रताप हमारे भारत माँ के श्रृंगार थे। मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष ही सच्ची वीरता है। महाराणा प्रताप ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने धर्म, देश और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमेशा अडिग रहना चाहिए। वे भारत के गौरव, साहस और स्वतंत्रता के अमर प्रतीक हैं, और आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
1: बिल्कुल, महाराणा प्रताप केवल इतिहास के पन्नों में सीमित नाम नहीं है, बल्कि वे भारत की आन बान और शान हैं। अब वक्त हो चला है तो बता दूं कि एचपीटी पर आज हमारे साथ थे चंद्रराम पटेल, पीके सेन, और कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे सुनील जयपाल, और एफएम से थे प्रवीण कुमार। अच्छा, ये महाराणा प्रताप की हम जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर ये कहना चाहिए कि चेतक ने प्रण निभाया था, अपने प्राणों की आहुति देकर राणा को बचाया था। ऐसी स्वामी भक्ति जगत में दुर्लभ हो जाती है। चेतक की अमर कहानी हर भारतवासी गाता है, और महाराणा प्रताप से मिलने वाली प्रेरणा हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो कि जिसकी नस नस में वीरता थी, जिसका हर सांस तूफान था, मातृभूमि की रक्षा करना राणा का केवल ध्यान था। सोने का महल छोड़ दिया पर झुकना कभी स्वीकार नहीं, ऐसे वीर प्रताप समान भारत में कोई और नहीं।
1: तो आइए आज उनकी जयंती पर हम सब संकल्प लें कि अपने देश, अपने संस्कृति, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। और सखियों, आज कंसोल पर वीर रस से भीगे गीतों को सुनवा रही थी मोनिका, और हम दो सखी आपके साथ थे, मैं हंसा विश्नोई, और
0: मैं स्वप्नीला।
1: तो स्वीकार की

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
3: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारते सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
2: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से कश्फिन नाहर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने

0: जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरूदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरूदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवास के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा

0: की यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल

0: अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने एफएम स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगी अरिजीत सिंह की आवाज के साथ। बोल लिखे हैं कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का। फिल्म का नाम है वॉर।

फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाते हैं वरुण जैन, सचिन जिगर और अलताम की आवाजों में ये गाना, जो है फिल्म जरा हटके जरा बचके से।

फिल्म संगीत में अगला गाना आप सुनेंगे सुनिधि चौहान और रश्मि सतीश की आवाज़ों में। बोल लिखे हैं इकरम राजस्थानी ने और संगीत बत किया है स्नेहा कनवांकर ने।

ये ट्रैक आप एंजॉय करेंगे जवान फिल्म से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज में, कुमार के बोल और अनिरुद्ध रवि चंद्रा का संगीत।

0: फिल्म संगीत में ही आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे मटरू की बिजली मंडोला फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है रेखा भारद्वाज, शंकर महादेवन और मोहित चौहान ने, गुलजार के बोल और विशाल भारद्वाज का संगीत।
1: है।

फिल्म संगीत का आखिरी गाना आप सुनेंगे कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के ठीक 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। एफएम बैंड पर विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा प्रसारण से प्रसारण निरंतर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ आ

0: वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तो आपको उनसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और वैसी ही चीज़ें हमेशा मेरे साथ होती, जब जब आपसे बात करने की इच्छा होती है तब तब मुझे वो मौका मिल जाता है कि मैं अपनी आवाज़ लेकर के आप सभी के सामने हूँ। बिल्कुल जी, शाम हो चली है। नमस्कार, सत श्री अकाल और जी, क्या है आपके हाल चाल? आई होप कि बहुत बढ़िया ही होंगे। और अभी आपने ट्यून इन किया 531 किलो हर्ज़ और एफ एम बैंड 102.1 पर युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। और इसी के साथ फिर से थोड़ी सांस ले लेता हूँ और मैं आ गया हूँ आपके साथ, आपका रेडियो आगे रोहित। और आज मेरे साथ है
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके आज के रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता। वैसे रोहित ने बताई दिया है कि किसी चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो हम दोनों ने जो है सुबह से ही सोच रहे हैं कि आपसे मिले, आपसे ढेर सारी बातें करें, और काफ़ी शिद्दत से जो है हमने चाहा था। तो देखिए, आपसे मिल लिए और बातें भी करेंगे। आज जो है इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक के साथ, और करेंगे ढेर सारी बातें।

0: रोहित, हम ना बहुत सारे, या मैं यूं कहूं कि हम सभी के मन में, हम सभी के दिमाग में, जहन में बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, या मुझे ये चाहिए, ये हासिल करना है, ये पाना है। लेकिन उन चीज़ों को पाने में हमें जिस तरीके से जुटना चाहिए, जिस तरीके से हमें उन्हें चाहना चाहिए, जिसमें हमें काम करना चाहिए उन पर, वो हम नहीं करते। ऐसा तुमने देखा है कहीं पर?
1: बिल्कुल ऐसा बहुत देखने को मिला है कि कई लोग जो है सपने बड़े ऊंचे देखते हैं, लेकिन रियलिटीज़ में जो है वो इतना काम नहीं कर पाते हैं। और एक बोलते भी हैं, सपने और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। जो हम बैठ करके सोचते हैं कि अगर कल हम उठ करके ये सब कर लेंगे और वो सब कर लेंगे और ऐसा ऐसा सब कुछ हमारा रूटीन सेट कर लेंगे, लेकिन जब हम करने लगते हैं वो चीज़, जब करने का समय आता है, उस वक्त तो वो हर एक चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, क्योंकि वो सारी चीज़ हमारे लिए बहुत नई होती है, बहुत अलग होती है। और जब हम एक्चुअल में वो करने जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि जो सपने हम लोग देख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं ये कर सकते हैं, एक्चुअल में वो इतनी ईजी नहीं है। मतलब आप किसी भी सक्सेस स्टोरीज़ को अगर सुनेंगे, तो उन्होंने फेलियर्स बहुत ज़्यादा फेस किए होंगे। अगर एक सक्सेस स्टोरी उनको मिली होगी, तो उसके पीछे कई सारे फेलियर्स की स्टोरी भी उन्हें मिली होगी। और एक्चुअल में और रियलिटी में होता यही है।
0: बिल्कुल। और कई बार ना हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, उस पर काम करते ही नहीं है, कि वही जो तुमने बोला कि कल करेंगे, परसों करेंगे, उस पर टाल देते हैं और वो काम फिर वहीं पड़ा रहता है। और देन जब मौका आता है तो हम सोचते हैं अब तो कर ही लेंगे, लेकिन जब आपने उस पर काम ही नहीं किया, उस पर मेहनत ही नहीं की, तो आपको कहाँ से मिलेगा?
1: बिल्कुल, एक बहुत फेमस कोट भी है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत में कमी नहीं रखते। और जब अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, जैसे कि मैंने बोला आपसे, जब हमको बात करने की इच्छा होती है ना, हम उतनी ही शिद्दत से प्रे करते हैं और सोचते हैं कि भैया एक दिन और मिल जाए कि आप लोगों से बात करते, उतनी ही शिद्दत से अगर आप मेहनत भी करें अपने सपनों के लिए, तो एक ना एक दिन जो सक्सेस, जो आपके सपने आपने सोचा, जो आपका गोल है, वो आराम से पूरा हो जाएगा।

0: अच्छा रोहित, अभी हम जो है ड्रीम्स की बातें कर रहे थे, तो
1: यस
0: जहाँ तक कि मैं देख रही हूँ ना, हमारे आसपास जो आज की जनरेशन है वो ना, मतलब एक बार जैसे उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई तो वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं।
1: बिल्कुल। देखो आज की जनरेशन जल्दी हार मान लेती है, ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो गया क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया पर जो टाइम स्पेंड करते हैं ना वो

0: बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई। और अगर कंपैरिजन करें पुरानी जनरेशन से लेकर के नई जनरेशन में, तो पुरानी जनरेशन के पास इतने सारे सोर्सेज नहीं होते थे और भी कुछ करने के लिए, तो अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो एक जगह पर ही कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करते थे। अगर कुछ और चीज़ कर रहे हैं तो उसी जगह पर वो पूरा अपना ध्यान जो है केंद्रित करके रखते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन है, उनके पास भटकने के ऑप्शंस बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं जो कि एडिक्टिव है। तो और जो बोलते हैं ना कि स्पेंड करने का जो टाइम होता है वो बहुत कम हो गया है, लोगों के पास पेशेंस बहुत कम हो गया है। आज की जनरेशन के पास जो पेशेंस है वो बहुत कम हो गया, क्योंकि रील्स आने के बाद ना जो सटल डेटा देखने और कंज्यूम करने का जो कैपेसिटी है लोगों में वो बहुत कम हो चुका है,
1: रील्स
0: और
1: की तो
0: उस
1: तुमने
0: कारण
1: बिल्कुल रील्स की तो तुमने क्या बात कही, मतलब कब 1 घंटे से 4 घंटे जो है सोशल मीडिया पर बिता देते हैं आज की जनरेशन, पता ही नहीं चलता उन्हें।
0: बिल्कुल इसी कारण उनको बुक्स बोर लगने लग जाती है, इसी कारण में उनको जो लेक्चर्स होते हैं वो बोरिंग लगने लग जाते हैं, इसी कारण वो जो सीखने वाली मूवीज होती है वो देखने में भी काफ़ी लोगों को बोरियत महसूस होने लग गई, क्योंकि आजकल जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी वजह से डिप्रेशन होता है, इसी वजह से जो है करियर स्विच करने के ऑप्शंस आ जाते हैं काफ़ी सारे बच्चों के पास, और इसी वजह से लोग हार भी जल्दी मान लेते हैं कि भैया हम तो कर रहे हैं अब नहीं कर रहे, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो कॉम्पिटिशन है, फेक कंपटीशन है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है।
1: तो फिर कुल मिलाकर यूं कहें कि दोस्तों हमारी लाइफ में जो है स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक जगह स्थिर रहिए, एक चीज़ को चुनिए और उस पर ही आप जो है पूरा वक्त दीजिए।
0: बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो सपने पहले ही बताया था, बहुत जल्दी और बहुत आराम से पूरे होंगे।

0: बिल्कुल जी, इस म्यूजिकल ट्रैक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और बहुत इंटेंस बात हो रही थी, तो इसी के बीच में ना विनीता, एक और चीज़ है कि पैशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो यूथ है वो इन दोनों के बीच में ना कहीं फंस से गए कि पैशन फॉलो करें या फिर पैसा कमा लें, है ना। तो बहुत एक अलग सी चीज़ हो गई। और इस बीच में ना मेरे को तो एक ही थॉट आता है कि भैया ऐसी चीज़ करो कि पहले तो अपनी इनकम आप स्टेबल कर लो। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे की नीड है या फिर फैमिली में पैसों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो पहले आप थोड़ा सा पैसा अर्न कर लीजिए, ऐसा जिससे आपके घर की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके, और उसके साथ साथ आप अपना पैशन भी फॉलो कीजिए। और जब आपको लगे कि पैशन से आपकी इनकम उतनी हो रही है, फिर आप फुल टाइम पैशन फॉलो कर सकते हैं।
1: मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि वैसे तो दोनों ही चीज़ें जो हैं ज़रूरी है, पैशन भी ज़रूरी है और पैसा होना भी ज़रूरी है। पैशन को फॉलो करने से पहले अगर आप स्टेबल नहीं हैं तो आप जो है पहले पैसों पैसे कमाने पे ध्यान दीजिए, या फिर कोई जॉब या कुछ भी ऐसी चीज़ कीजिए जिससे आप स्टेबल हो सकें और अपने पैशन को फॉलो कर सकें, राइट?
0: बिल्कुल ऐसा होता है कि पैशन तो हम में बहुत है करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक ऐसी 9 to 6 जॉब कर रहे हैं जिसमें हमको मज़ा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसा तो मिल रहा है लेकिन वो मेंटल सेटिस्फिकेशन जो है वो हमें नहीं
1: होता
0: मिलेगा।
1: है ऐसा, कई बार होता है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनका आर्ट है, जो उनका पैशन है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो वो कहीं ना कहीं जो है गुम होते हैं अपनी लाइफ में।
0: बिल्कुल, आज की दुनिया में क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है, तो आप किसी भी पैशन को फॉलो करते हैं, हर एक पैशन से अच्छी इनकम हो सकती है, बस आपको थोड़ा सा समय उसमें देना है, लेकिन उससे पहले स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहें तो कहीं भी जॉब करके अपने पैशन को भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं, और जब आपके पैशन से अच्छी इनकम आपको मिलने लगे, आई थिंक उससे ज़्यादा फिर अच्छा कुछ नहीं होगा।

0: रोहित, कई बार ना, मतलब इस गाने को ही मैं सुनकर कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है कि कई बार ना ऐसा होता है कि हमारे दिल के जो बहुत करीब इंसान होता है ना, वो हमसे थोड़ा दूर होता है, तो उसके बिन कहीं पर भी मन नहीं लगता. कुछ भी काम कर रहे हैं हम, एकदम स्विच करता है उसी की, उसी का जो ख्याल आता है, वो क्या कर रहा होगा, कैसा होगा, क्या कहाँ पर होगा, इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो मुझे याद कर रहा होगा कि नहीं कर रहा. ऐसा तुम्हारे साथ होता है?
1: बिल्कुल ऐसा आई थिंक हर एक के लाइफ में होता है, हर एक के साथ होता है। किसी को जिनसे वो प्यार करते हैं उनकी याद आती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर से दूर होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर जॉब कर रहे होते हैं, उनको अपने घर वालों की याद आ रही होती है, अपनी मम्मी को मिस करने को कर रहे होते हैं, क्योंकि कल मदर्स डे भी है। तो कई जो लड़के हैं, कई जो लड़कियां बाहर दूर जहाँ पर काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, ऐसी लाइफस्टाइल में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको घर की बहुत याद आती है। तो आई थिंक उनको भी जो है इस गाने से डेडिकेट कर सकते हैं, वो भी इस गाने से ना रिलेट कर सकते हैं कि भैया सही में उनके बिना वाकई में मन नहीं लगता। क्योंकि कई बार ब्रेकआउट्स होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि किसी से बात करने की इच्छा होती है, या कई बार है ना हम घर को मिस करते हैं, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई लोग जो होते हैं वो किसी पर्सन में अपना घर ढूंढते हैं, है ना, किसी इंसान, किसी व्यक्ति में अपना घर मानते हैं और बोलते हैं कि तुम ही मेरा घर हो, जहाँ पे आपसे मिलकर, आपसे बात करके हमें वो सुकून मिलता है। अगर आपकी लाइफ में भी, जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपका घर हो, जो जिसे लगता है कि भैया वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उनसे बात करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी रीज़न से अगर आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो, या झगड़ा हो गया हो, या बात बात नहीं हो रही हो, या हो रही हो, कुछ भी हो, आप फटाफट से ये जो अगला गाना है उन्हें सुनाइए, क्योंकि ये डेडिकेट हम उनके लिए कर रहे हैं आपकी तरफ से। तो भैया आप फटाफट से उन्हें भी 102.1 पर ट्यून इन करवा लीजिए, क्योंकि युवाणी चल रहा है, युवा पसंद कार्यक्रम है, और आप लोगों के लिए ये अगला ट्रैक हमारी तरफ से।

0: अच्छा रोहित, अभी
1: जी
0: तुमने मदर्स डे के बारे में बताया कि कल मदर्स डे
1: जी
0: है, ठीक
1: बिल्कुल
0: है, और तुमने जो है कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को लेकर जो तुम्हारे दिल में प्यार है वो भी बता दिया उस गाने से कि तुम ये गाना जो है उनको डेडिकेट करते हैं ना।
1: यस
0: तो मैं जो मतलब सोचती हूँ कि कई बार ऐसा होता है, मतलब ऐसा क्या होता है, ऐसा ही है कि लड़के जो है ना अपनी मम्मी से ज़्यादा कनेक्ट होता है, पापा से नहीं।
1: बिल्कुल शायद ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये मतलब हर एक
0: हाँ,
1: लड़की
0: हर
1: के
0: एक
1: साथ
0: लड़के
1: होता है,
0: के
1: और
0: साथ
1: बहुत
0: है।
1: कम ऐसे निकलते जो कि अपने पिता से जो है वो थोड़े फ्रैंक होते हैं और मम्मी से डरते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ये ऐसा ही एक सेट हो गया, इसका मैं मतलब एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, हालांकि पापा से भी हूँ, लेकिन ज़्यादा क्लोज़ जो है वो मैं अपनी मम्मी से। कुछ भी मन में होता है ना आप जा कर के,
0: लड़के जो है मम्मी से शेयर
1: हाँ
0: करते हैं, पापा
1: बिल्कुल,
0: से
1: और
0: उन्हें डर
1: लड़कियां जो होती
0: लगता
1: है
0: है
1: ना
0: बताने में।
1: वो अपने पिता से शेयर करते हैं कि हमें पापा ये चाहिए वो चाहिए, और लड़के जो होते हैं ना वो मम्मी को बताते हैं, क्योंकि पापा जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हमको लेकर के। पता नहीं ये एक ऑरा बन चुका है, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, क्या इसका रीज़न है बिल्कुल किसी के पास इसका सही जवाब नहीं होगा
0: अच्छा,
1: आई
0: तुम्हारे
1: गेस।
0: साथ कभी ऐसा, वैसे तुम्हारी भी बहन थी, बहन होगी तो जो है तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ कि बहन ने जो है 60% लाए और तुमने 70 लाए, लेकिन फिर भी तुम्हें जो है डांट पड़ी कि 70 कैसे है।
1: नहीं बेसिकली मेरे में ऐसा केस हुआ है कि मेरे घर में जितनी भी लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो घर की जो लड़कियां हैं वो स्कॉलरशिप ली आती है, 80% 90% से नीचे उनके आते नहीं हैं, और जो लड़के होते हैं उनको 60% या

0: 70% से ज़्यादा आते नहीं है। मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं लड़के, लेकिन 70% से ज़्यादा आते ही नहीं है। तो ये एक स्टैंडर्ड हमेशा सेट रहा है कि लड़कों को ही मेरे घर में सबसे ज़्यादा डांट पड़ी है, चाहे कोई भी रीज़न हो। तो भैया डांट तो हमने भर भर के खाई है।
1: कोई बात नहीं, अगला गाना जब तुम सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा और डांट जो है तुम भूल जाओगे।
0: शायद
1: वैसे कल मदर्स डे है तो हमारी सभी माओं को हैप्पी मदर्स डे हम दोनों की तरफ से, और सुनते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: बिल्कुल जी, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। और आजकल ना विनीता, एक प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखने को मिल रही है कि जो इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं लोग, उनके अकाउंट डिलीट हो रहे हैं या फिर जो है उनके अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं। तो इस चीज़ से ना, जिनके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोवर, जिनके हंड्रेड्स के में फॉलोवर हैं, उनके भी जो अकाउंट है वो बैन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत निराशाजनक मुद्दा जो है वो यूथ के बीच में बन चुका है। और अगर आप हमें सुन रहे हैं तो इसका जो सोल्यूशन है वो भी अगर आपका हो तो मैं बता दूं उन्हें।
5: बिल्कुल बिल्कुल बताओ।
4: बिल्कुल, बहुत इजी। अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपकी एक ईमेल एड्रेस पर या फिर एक मोबाइल नंबर पर मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, दो या दो उससे ज़्यादा कोई पेज बना हुआ है आपके, तो सिंपल सी चीज़ है, इंस्टाग्राम में आप जाइए। वहाँ पर आप अकाउंट सेटिंग में जब जाएंगे तो वहाँ पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटीज़ के ऑप्शन के अंदर आपको वेरिफिकेशन विथ सेल्फी का एक ऑप्शन दिया जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया होगा या फिर जो भी मेल एड्रेस आपने रजिस्टर किया होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसके बाद आपको एक सेल्फी खिंचवानी होगी अपने फ़ोन के कैमरा से। वो सेल्फी जब वेरीफाई हो जाएगी तो आपका जो अकाउंट है वो भी वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, अगर आप दो या दो से अधिक या जितने भी आप अलग अलग आईडी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो सारी आईडीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो सस्पेंड नहीं हो, तो ये वाला जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। और अगर एक ईमेल एड्रेस से ज़्यादा बनी हुई है तो ये कर सकते हैं कि आप उनका ईमेल एड्रेस चेंज कर सकते हैं या फिर नंबर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम की जो पॉलिसी है वो एक आईडी पर जो है दो से ज़्यादा अकाउंट बनाने के लिए आपको अलाउ नहीं करती है। तो आप ये कर सकते हैं और फिर अपनी सेल्फी वेरीफाई करके भी आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में भी अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है तो आपका जो अकाउंट है वो सेफ रहेगा।

0: बिल्कुल जी, इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है। और जो भी युवा हमें सुन रहे हैं ना अविनीता, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी अभी ना रेलवे ने एक वैकेंसी निकाली है जिसमें कुल 1644 पद है
1: अच्छा
0: अप्रेंटिस की, जो है ये वैकेंसी है। इसके जो आवेदन है वो 5 मई 2026 को शुरू हो चुके थे और लास्ट डेट जो है 4 जून 2026 तक रहेगी। फीस की अगर हम बात करें तो एकदम फ्री है, निशुल्क है।
1: क्या बात है।
0: इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी फीस या किसी भी फीस का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10th पास आपका होना ज़रूरी है, इसके साथ साथ ITI की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो अधिकतम 24 साल की होनी चाहिए, जिसमें SC ST और उनको 5 साल की छूट अलग से मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की अलग से छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in, इस पर आप जा सकते हैं और सारा इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सारी इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल जॉब आपके लिए रहने वाली है, रेलवे के अंदर कुल 1644 पोस्ट।

0: रोहित, कई बार ना हमें जो मतलब जल्दबाजी इतनी होती है कि कोई भी स्ट्रीम चूज़ करना है, कोई भी एक चीज़ चूज़ करनी है, तो हम इतनी ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं कि जो चीज़ हमारे लिए सही होती है हम वो चूज़ नहीं कर पाते. और जैसे जैसे हमारे लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक रिग्रेट सा फील होता है कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, है ना?
1: बिल्कुल ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब बड़े होते रहते हैं ना, तब तब हमें रियलिटी पता चलती है, एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत आता है, मैच्योरिटी बहुत आती है, और सही गलत में पहचान जो है हमारी और अच्छी होने लग जाती है। तो उस वक्त हमें ये लगता है कि काश ये करियर मैंने चूज़ कर लिया होता तो इसमें मेरी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाती, या फिर इस जगह पर यहाँ चला जाता, या अच्छे से पढ़ लेता, या फिर कुछ भी काम कर लेता तो आज मैं अलग
0: कुछ
1: जगह पर
0: और
1: होता।
0: होता,
1: हाँ
0: कुछ और
1: बिल्कुल।
0: होता.
1: लेकिन बोलते हैं ना कि जब आपके दिमाग में ये ख्याल आता है, आप तब से ही अगर काम शुरू करने लग जाएं, और जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपको लगता है कि इसमें मैं अच्छे से ग्रोथ कर सकता हूँ,
0: हाँ
1: अगर आप उस फील्ड में स्विच करने लग जाएं, तो शायद आने वाले समय में भी फिर आपको यही सेम चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप वापस उस पर काम करने लग जाएंगे। सही होगा या गलत होगा, आपके मन में एक रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया।
0: और वो चीज़ जो होती है ना, काश बन के नहीं रहेगी कि
1: हाँ
0: काश मैंने ये किया
1: बिल्कुल,
0: होता.
1: एक हमेशा मन में खुशी रहेगी कि मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। अगर मेरे से हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, रिजल्ट बाद के होते हैं, लेकिन ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता
0: और
1: है।
0: जो भी मेरी पसंद की चीज़ थी मैंने वो चूज़ की.
1: बिल्कुल। तो वो अगर आपके मन में ऐसा लगता है कि एक चीज़ है जो आज भी मिसिंग है, और अगर काश मैं ये कर लेता तो आज सब कुछ बहुत अच्छा होता, कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी देर नहीं हुई है, आप एक बार उसको ट्राई करके देख लीजिए, क्या पता आपका अगला करियर ग्रोथ जो है और आपका जो हाइज है वो
0: हाँ
1: उसमें ही हो।
0: सही कहा.

0: ये गाना कितना प्यारा था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना। और बहुत ज़्यादा बातें हो गई ना विनीता, ऐसा लग रहा था कि लाइफ आज पूरी डिस्कस हमने यहीं पर कर ली है।
0: बिल्कुल, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अलग अलग से टॉपिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि घड़ी भी हमें अब इजाज़त देने के लिए बोल रही है कि थोड़ा समय हमारे पास होने वाला है, एक गाना हम और सुनेंगे और उसके बाद आपसे विदा लेंगे। फिलहाल आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये वाला म्यूजिकल ट्रैक, उसके बाद लेते हैं ना विदा आपसे।

0: तो दोस्तों फाइनली आपसे जो है विदा लेने का टाइम आ चुका है। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ
1: मैं था आपके साथ आपका रेडियो रागे रोहित।
0: आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, कंसोल पर हमारे साथ थे पलाश। दीजिए हम दो रेडियो बडीज को इजाजत, फिर मिलेंगे ऐसी ही प्यारी सी शाम में और ऐसी ही खूबसूरत सी प्लेलिस्ट के साथ। नमस्कार।

0: युवा साथी, अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। 6 बजने को है। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह।

0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीथ प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविन्द्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉ एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

पहले इस सभा के शेष कार्यक्रम। रात 9:30 पर राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती कार्यक्रम और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7 सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। सिमाड़ेरी गूंज कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7:30 का।

ये थे हमारी सभा के शेष कार्यक्रम। लीजिए अब सुनिए कल दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। कल रात 10 बजे सुनिएगा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन आप सुन पाएंगे सुबह 6:15 बजे। कुछ बातें कुछ गीत, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7 बजे। रोजाना की तरह मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार का प्रसारण समय रहेगा सुबह 8:30 पर। बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चुनमुन लेकर हाजिर होंगे सुबह 10 बजे। सुबह 10:30 पर, दिन में 12:30 पर और रात 9:15 बजे सुनिएगा सुगम संगीत।

दिन में 12 बजे आप सुनिएगा लोक संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:05 का। महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम नारी वाटिका का प्रसारण होगा दिन में 1:15। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:00 का। शाम 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल। 7:30 पर सीमा डेरी गुंज कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थे कल दिन भर प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अभी आपने सुना देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। 6:20 होने को हैं। कुछ देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। इसके बाद हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।

0: प्रवाचकः जतिना शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य प्रथमः भाजपा मुख्यमंत्री संजातः। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्। तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे विंशत्युत्तर शतं विधायकानां समर्थनं वर्तते। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणेन अशेषे हि देशे विवादानां सौहार्दपूर्ण रीत्या निस्तारणार्थं राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विहितम्। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर द्विपक्षीय सहयोगं सुदृढीकर्तुं त्रिनिदाद एंड टोबैगो देशस्य प्रधानमंत्रिणा सह मेलनं साधितवान्। अपि च क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य जयपुर नगरे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलेन सह क्रीडिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। शुभेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाल राज्ये प्रथमं तावत् भाजपा दलस्य प्रशासनं संघटितं जातम्। अवधेयं यत् भाजपा दलं विधानसभा निर्वाचनेषु ऐतिहासिकं जयं समर्ज्य तृणमूल कांग्रेस दलस्य 15 वर्षात्मकस्य शासनस्य अन्तं कृतवत्। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले राज्यपालः आर एन रवि श्री शुभेन्दु अधिकारिणं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। तेन सह पञ्चान्यैः मन्त्रिभिः अपि पदगोपनीयतायाः शपथं गृहीतम्।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: तमिलनाडु राज्ये नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तेषां पार्श्वे विंशत्युत्तर शतं विधायकानां समर्थनं वर्तते। चतुस्त्रिंशदधिक द्विशतं सदस्यानां विधानसभायां बहुमताय 18 शतं विधायका आवश्यका आसन्। चेन्नई नगरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः टीवीके दलस्य नेता अधव अर्जुनः अवदत् यत् वीसीके तथैव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इत्युभाभ्यां दलाभ्यां तस्मै पक्षाश्रयं विना समर्थनं प्रदत्तम्। अधुना निर्वाचने 88 आसनानि जित्वा टीवीके सर्वबृहत्तम दलत्वेन उद्भूतम्। यद्यपि दलनेता सी जी सैफ विजय द्वयोः क्षेत्रयोः विजयी जातः, अतः तेन एकं स्थानं परित्यक्तं भविष्यति, येन दलस्य संख्या 70 भविष्यति। तथापि कांग्रेस दलस्य 5 विधायकाः सीपीआई सीपीआईएम वीसीके तथा आईयूएमएल इत्येतेषां प्रत्येकं द्वौ द्वौ विधायकौ च मिलित्वा सहायक दलानां कुलसंख्या 13 वर्तते, येन बहुमतस्य मार्गः प्रशस्तो जातः। राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरणम् अद्य सम्पूर्ण देशे ऐषमः द्वितीय राष्ट्रिय लोक न्यायालयस्य आयोजनं विदधाति। प्राधिकरणस्य सदस्य सचिवः संजीव पाण्डेयः आकाशवाणीं विज्ञापयत् यत् लोक न्यायालये सहमतेः योग्येषु आपराधिक प्रकरणेषु वादश्रवणं विधीयते। अस्य आयोजनस्य उद्देश्यं न्यायालयेषु लंबित प्रकरणानां सहमत्यानुसारं निस्तारणम् इति वर्तते। श्री पाण्डेयः अवोचत् यत् 23-2000 25-2000 यावत् 12 राष्ट्रिय लोक न्यायालयानां आयोजनं विधाय 26 कोटि प्रकरणानां समाधानम् अभवत्।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर विस्तारित किया जाए।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय

0: मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गईं, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास एमएसीटी के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसए राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में। और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉ भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देशभर के शिक्षाविदों, न्यायविदों

0: और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थियेटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात फलोदी में न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा जोधपुर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में

0: अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक

0: करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मॉनसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में आए घनखर ठोणा तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू आज देशभर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लकाईची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला नी सुनवाई करी जावे है। वे कहो कि इन अदालतां रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजोल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी चिया।
3: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में तो 3 का गठन किया गया, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में 3 बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में और लगभग

0: 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिलावण है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कहो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकों सागे नुआ कानूना रा बारा में विगतवार चर्चा करी जी अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रा बारा में विचार करी जियो।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेल लोक अभियोजकों की समस्याएं सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकों लागू करने रा बारा में खास तकनीकी सत्र रखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्यों और न्याय रा अधीन काम लेवण मथ जोर तीनो है। वह आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा मथ राखी चिया दो दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कहो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवण जरूरी है, पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यों ने नजरअंदाज नहीं करया जा सके है और न्याय राहितां री अनदेखी नहीं वेवनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चिया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहलीवाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी चिया कार्यक्रम में राज्यपाल आर एन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वह सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कहो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। ऐसा समाचार।

0: കാര്യക്രമമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഭജൻലാൽ ശർമ്മയെ ശിർക്കത്ത് കിനി വ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റർ ജരിയ കഹ്യോ ക പശ്ചിമ ബംഗാൾ രി ജനതാ രോ ഓ ഐതിഹാസിക് ജനാദേശ് വികാസ് സുശാസൻ ദേശ ര ഭലാ അര ജനതാ ര വിശ്വാസ് രി മസ്ബൂത് അഭിവ്യക്തി ഹൈ ധ്യാൻ ജോഗ് ഹൈ ക പശ്ചിമ ബംഗാൾ മായ പെഹ്ലി ദഫാ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി രോ രാജ് ആയോ ഹൈ ഐ സമാചാർ ആപ് ആകാശവാണി ജയ്പൂർ അജ്മേർ സുന രഹ്യാ ഹോ प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पताल माए अब इलाज जुड़िया सगला नियमारी करड़ा यूं पालन डॉक्टर समेत दो नर्सिंग कर्मचारियां ने मुअत्तल कर दीना है। ऐसा गई यूटीबी माथे लागोड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और दो डॉक्टरां ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजी कानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकयारो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो के मामला री शुरुआती जांच माए चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया माए गंभीर लापरवाही री ठा पण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस दियो चियो है। ई वाकया पाछे कांग्रेस पार्टी वारा नुमाइंदा रो एक दल कोटा भेजियो। राज्य रा पहली वाला चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणारी अगुवाई माए ओ दल अस्पताल रो दौरो किन्नो। ई पाछे वे अस्पताल प्रबंधन माथे घोर लापरवाही रो आरोप लगाता थका कहो के ऑपरेशन थिएटर और जापा विवरण रा कमरा री खराब हालत रे बावजूद वठे ऑपरेशन करी जिया जी कारण मरीजा माए संक्रमण फैल गयो। महाराणा प्रताप री जयंती रे मौके आज वाना श्रद्धा भाव सागर याद करिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए नमन करता थका कहो के महाराणा प्रताप रो त्याग और खुद माथे अभिमान युगा युगा ताई सीख देवेला। ई मौके भरतपुर माए शौर्य यात्रा निकाली ची। ई पाछे राखी जी संगोष्ठी माए महाराणा प्रताप री जबरदस्त हिम्मत और देशभक्ति री गाथावा याद करी ची। पाली जिला रा जवाली माई रैली निकाली ची और खून दान शिविर लगाई चियो। प्रदेश माए जनगणना 2027 री तैयारियां रा तेत कर्मचारियां ने सिखावन देवन रो दौर चाल रियो है। डूंगरपुर माए प्रगणका और सुपरवाइजरा रा तीजा बैच रो तीन दिन रो सिखावन कार्यक्रम आज पूरो भियो। सिखावन रे दौरान जनगणना सारू मोबाइल ऐप काम लेवन लेआउट नक्शो बनावन और स्व गणना रा काम रे बारा माए विगतवार जानकारी दी री जी। प्रगणका ने घर घर जार मोबाइल फोन रे जरिए डेटा दर्ज करन रो अभ्यास ही कराई चियो। ई दफा डिजिटल जनगणना दो दौर माए करी जा रही है। राज्य माए इरा पहला दौर माए 16 मई 14 जून ताई मकाना री लिस्ट बनाई जावेला जदके मुख्य जनगणना फरवरी 2027 माए करी जावेला। अरबे मौसम प्रदेश रा अतुणी हल्का माए लू बाज रही है जदके लंकाऊ उगनी हल्का माए आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। जैसलमेर बाड़मेर और फलौदी माए ऊंचो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। कुछ और जिला माए जबरदस्त तावड़ो पड़ रियो है वठे दिन सागे रात्रि बगत ही पारो सामान्य ऊंचो दर्ज करियो चा रियो है। बीती रात फलौदी माए 31.4 और जोधपुर माए 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के आवता दिना पारो और चढ़वारा आसार है।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है।
0: जयपुर रा पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल पुलिस रा अहलकारा ने अपराधियां रा खिलाफ करड़ी कार्रवाई करण और पीड़ित जनता ने तुरंत न्याय दिलावन रा जतन करण रा हुक्म दिना है। वे आज जयपुर माए शहर री कानून व्यवस्था बनाई रखण और अपराधा माथे काबू करण रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। पुलिस कमिश्नर

0: तौर महिलावां अर बच्चा रे खिलाफ हेवण वाला अपराधा अर अनुसूचित जाति जनजाति जुड़िया मामला माए तुरंत जांच कर अर असरदार कार्रवाई करण माथे जोर दीनो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड री ओरू आज भूगोल विषय री प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांति सागर पूरी फेगी। राज्य 38 जिला माए फी ई परीक्षा माए 76.43% उम्मीदवार शामिल फिया। आईपीएल क्रिकेट होड़ रहते आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स पीछे मैच फैला। वो मुकाबलो जयपुर रा सवाई मानसिंह स्टेडियम माए अब थोड़ी देर पछे 7:30 शुरू फैला। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश माए आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची मोटी तादाद माए मामला राजीनामा निपटाई चिया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय रा अधीन काम ली जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल माए इलाज रा प्रोटोकॉल री करड़ाई पालना करण रा हुक्म दीना। और प्रदेश माए घनखट होना तेज गर्मी रो असर। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार,
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनना सगला हेतालु श्रोताओं ने घणे मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणेजारा
0: राम राम। दिनेश भाई देखो के राजस्थान रो नाम जद कठी आवे नी
1: हाँ
0: तो इन धरती मुजब सूर वीरा रो बखान हो।
1: हाँ, धर कूचा धर मंजला,
0: धर कूचा धर मंजला, धरती सूर वीरारी,
1: धरती धोरारी, धरती सूर वीरारी। सोने सूरज उगियो दीठी बादलिया, मुरधर लेवे वारणा भर भर आखड़िया।
0: थे आ कविता पढ़ो, इन गीत हुनादा तो
1: हाँ हुनादा सा।

0: दिनेश भाई कड़ो लाग्यो गीत।
1: जोरदार लागो गुरुदेव भाई, देखो रू रू जी का है बैठा होगा और शरीर में मैंने एड़ो नूतन जी को जोश है और जागृत हुआ है। तो देखो गुरुदेव भाई,
0: हेओ दिनेश
1: हाँ
0: भाई, भाव जको वे उरे भी कितना प्रकार हो।
1: प्रकार वैसा
0: अगर कोई भक्ति रो भाव में वे तो डूब जा,
1: डूब जा, मग्न हो जा।
0: हर भक्ति रे भाव में उगे ने दुनिया जकी मिथ्या लागण लाग जा।
1: हाँ
0: उन्हीं तरह अगर धरा और वीरता रो भाव उगे रे मायने गीत संगीत रे जरिए प्रवेश करे
1: हाँ
0: तो उरा रोम रोम जका है रू उबा हो जावे,
1: वैसा
0: शरीर रे मायने के सिरन बाजे और लागे के नहीं बस मऊ मजबूत न मऊ ताकतवर कोई नहीं है। तो आ धरा आ धरती जका वीरारी धरती है, इन धरती रे वीरा ने आपा कहीं कह के याद रखा वाणी वीरता रो बखान करा और देखो आउनाली पीढ़ी ने बतावा
1: हाँ
0: जनाई आपा आपाने जो को कहीं कह के इतिहास है वर्तमान री सुदृढ़ता और वर्तमान री चमक दमक जो को पुराणो इतिहास है नहीं
1: हाँ
0: उए रे माते बहुत आधारित हुए।
1: सही कह गुरुंदर भाई, विन इतिहास ने आपा पढ़ा और आज रे जीवन ने आपा चरितार्थ करा तो जी की आने वाली पीढ़ी है उन महीने जी को जोश है वो जागृत हुए और देश प्रेम री भावना, देश भक्ति री जी की भावना है उन री थर्पणा आने वाला युवा पीढ़ी रे महीने, चाहे वो बालक हो और बालिका हो उन महीने वह गुरुंदर भाई।
0: बिल्कुल देखो दिनेश भाई एक और बात बताऊं था
1: हाँ
0: कि 1000 साल तक 1000 साल कहीं भारत और जो को आपनो परगनो बनियो सिंधु घाटी सभ्यता रो
1: हाँ
0: तो भारत कदी किणी दूजे देश माते हमलो नहीं करियो
1: हाँ
0: पहला। लेकिन मानव सभ्यता रे उद विकास रे मायने अगर आप आज 1500 1700 साल पहला इतिहास खंगलन की कोशिश करा तो 1000 साल पहला भारत री जकी ताकत है, भारत री जकी चमक है, भारत री गुणगान है, बे दुनिया में गूंजतार जका भी लालची लुटेरा हा
1: हाँ
0: उवा ने आ धरा आकर्षित करती।
1: हाँ
0: तो बे आपरी हर चीज में कहता के नहीं भारत माते हमलो करो, भारत माते हमलो करो। और इन तरह लगभग 500 700 साल लगातार लुटेरा जका है भारत री इन धरा ने लूटन वास्ते हमलो करियो आक्रमण करियो अठेरी सभ्यता और संस्कृति ने तहस नहस करने रो प्रयास करियो। उए रे बावजूद भी आज जको भारत है वो दुनिया री चौथी बड़ी ताकत है, एक महाशक्ति रे मुजब पूरी दुनिया में आप रो संदेश आ दे रही है कि भाई शांति सब मोटी चीज है और विश्व एक कुट

0: सही कहे गुंदर भाई, इन्हीं दिसारा महीने महाराणा प्रताप री आज जयंती है और वे देखो सूरवीर हा आप री जी की धरा है, उन्हें देखो के हमेशा स्वतंत्र राखी, वे गुलामी देखो स्वीकार नहीं करी, जोरदार वे लोह लियो और देखो के काबिज रिया। तो आज उनारे जी को नाम है, उनारे जी को शौर्य है, वो इतिहास रे पन्ना रे महीने स्वर्णिम अक्षर रे महीने लिखी जियो है।
1: बिल्कुल, शुरुआत अगर देखा के मोहम्मद शाह अब्दाली नाम रो लुटेरो जको अपने अठे आयो, अठेरे लोगारे माते मार काट करी और बारे माते तलवार चलारवानी बोली चाली चाल चलन बदलन वास्ते जोर दियो और सोमनाथ रो मंदिर लूटन रो प्रयास करियो, है नी?
0: हाँ, 17 बार लूटियो सर।
1: हाँ, 17 बार लूटन रे बावजूद भी पछे बो गोरी उए ने छोड़ दियो। पृथ्वीराज चौहान नु संघर्ष करियो तो भी चौहान दया भाव है नी, और पछे उए रो खामिया जो भी भुगतियो। इनी तरह जका ए अक्रांता भारत ने लूटन वास्ते, भारत ने री सभ्यता ने खत्म करन वास्ते, भारत री जकी सोच है उए ने बदलन वास्ते आया। उए में अगर कोई अपने इन क्षेत्रों मेवाड़ क्षेत्र कोई हामिल योद्धा रे रूप में खड़ो हो और बाणा पग छोड़ाया तो वहां में महाराणा प्रताप रो नाम। महाराणा प्रताप जंगला में रहा, कई अब गया जेली, इन कहन के भाई घोड़े माते ही बैठा रहा। उठेरा जका आदिवासी लोग हा वाणी साथे लेन सेना बनाई और जका दुश्मन हा माने कहीं के दिन में ही तारा दिखाया। तो इन तरह

0: सही कहो गुरुंदर भाई, अच्छा कर्म करे निशा तो सदियां कई हजारों साल तक जिको अपनो मान को है उन महापुरुष ने उन संत ने याद करे, और जिका अब का काम करे बुरा काम करे लूट खसोटरा जी का काम काज करे तो वाने कोई याद नहीं करे, और उनारा जी का महिमा मंडन है वे भी गुरुंदर भाई नहीं वे सके। तो सांच ने कोई आँच नहीं है, अपने ए जी का अपना महापुरुष है, अपना जी का योद्धा है, आने वाली पीढ़ी ने सीख लेनी चाहिए।
1: मुगल की तो अत्याचार करियो की तो है,
0: हाँ
1: आज कठे वाणो नामो निशानी खत्म
0: नहीं
1: हो गयो,
0: ऐसा
1: गौरी ने गजनवी ने कठे।
0: अच्छा कर्म करे भगवान ने सब याद करे।
1: तो क्यों न मतलब है जका गलत खोटे कामरा खोटा नतीजा, कर्म हमेशा पुनरावर्ती करे।
0: हाँ
1: अच्छो कर्म करने वालो हमेशा अच्छा ही प्राप्त करे, और बुरो कर्म रो माथे चादर डाल के नहीं, ए अच्छा कर्म है
0: हाँ
1: तो बा एक दिन बाहर रहो चादर हट जार, उएरी बुराई आ जावे सामे। तो भाई लोग आपने इन परंपरा ने निभावनो है, आउन आलो टाइम विज्ञान तकनीक टेक्नोलॉजी और उमें भारत रो बढ़तो वर्चस्व, तो आपनो जको मूल मंत्र है
0: हाँ
1: वसुदेव कुटुंबकम,
0: पूरा विश्व ही अपना परिवार
1: हाँ
0: है।
1: पूरे विश्व में इन भावना ने प्रत्येक जको मिनक है प्रत्येक लुगई है उरे ये में भरनो है के भाई मैं उन देश आया हाँ जटेरी सोच जटेरी समझ आ कहवे के वसुदेव कुटुंबकम। चाहे आप रो देश कोई हो, आप रो रंग कोई हो, आपरी बोली कोई हो, आपरी जाति कोई हो, आप रो धर्म कोई हो, मिनक होने की वजह थे मारे इन मान के परिवार रा सदस्य हो, ये रा मतलब मारे परिवार रा सदस्य हो,
0: हाँ
1: आ सीख देनी है। इरे विपरीत कोई भी बात करे के मैं हाकरो न वो खराब न वो यून वो, ये रो मतलब वो घोर अन्यायी और पापी है।
0: सही कहो गुरुंदर भाई, कण कण ने देखो आपा नमस्कार करा हाँ, पेड़ पौधा

0: आज के वन्य संपदा है, इन रो आपा मान सम्मान कर रहा हाँ, इन्हें आपा सहजन रख हाँ, इन रो आपा संरक्षण कर रहा हाँ। और गर्मी वाला दिन है तो आपा चिड़ी कमेड़ी जो भी जीव जिनौ रहे उन वास्ते देखो प्राइमरी व्यवस्था करा हाँ।
1: दिनेश भाई मिनख मानन ने तैयार नहीं है, लेकिन जका रूखड़ा है
0: हाँ
1: बाणी कुदरत देखो कड़ी है कि हर जगह उन तरह रा रूख हर उन तरह रा फल मिल जाए।
0: हाँ इतनी गर्मी में फल
1: और
0: लागे।
1: रूख तो छोड़ो भाई, जका नभचर है
0: हाँ
1: वे इन पूरी गोल पृथ्वी ने आपरो घर माने,
0: एक हम जैसा
1: चाहे हजारों किलोमीटर दूर वाणो जन्म यो है, वाणो जको चक्र है उन मुजब उड़न कठे आन बच्चा देवे, कठे बान बच्चा ने मोटा करे, पछे पाछा जान हजारों किलोमीटर रो सफर करे। तो जद पंछी जके ने आपा कहा भाई इमे तो मिनकू कम अकल है,
0: हाँ बुद्धि कम है।
1: हाँ तो पक्षी भी आ इन पूरी प्रकृति और इन धरा ने आपरो परिवार मानते थके, आपरो जको उड़न चक्र है
0: हाँ
1: उए ने पूरो करे।

0: आपा जखे ने कुर्जा केवा साइबेरिया कठे पड़ियो और
1: आर्टिक महासागर आवे
0: अठे खीचन में भरतपुर में जटे जटे वाणा जका कहीं के चिन्हित
1: क्षेत्र
0: हाँ और नदी और नाडिया
1: तालाब है
0: वाण बात बैठा थी की आप
1: हाँ गुरिंद्र भाई देखो ये पक्षी बहुत ही अच्छो संदेश देवे। देखो आंधीरा थपेड़ा गर्मी एड़ा तूफान तय करता थका लंबी भा तय करता थका आवे है करे है। एक नयो जीवन दे परा और फाचा आप रे हगे ठोड़ जाता रहे। तो आप एक बात कही भाई आश्रय स्थली है वीरमाती किणी तरह पक्षी भी देखो एक संदेश देवे की भाई आ ठोड़ माड़ी नहीं है यू नहीं आन अटीच बैठा रह जा नहीं आप फाचा हगे ठोड़ जाता रहे।
0: कई बात कही थे बहुत गहरी बात कही
1: हाँ।
0: तो आप अगर किणो ही नहीं सीख सका तो आप प्रवासी पक्षियों ही सीख ला
1: हाँ।
0: के प्रवास है वो। और भाई देखो
1: विश्व प्रवासी
0: विश्व
1: पक्षी
0: में
1: दिवस
0: जो
1: है।
0: को प्रेम रो संदेश देवे
1: हाँ।
0: वो सब मोटो है जो नफरत रो संदेश देवे वो सब मोटो खोटो है।
1: खोटो है उपाय देता नहीं है सर।
0: हाँ और उन खोटे संदेश ने खोटे विचार ने आपने ये में नहीं लानो है। और बात आपा जद पक्षियारी करी ने प्रवासी पक्षियारी करी तो हमें कई एड़ा वीडियो आवे जके बे गुलाबी गुलाबी हंस
1: हाँ
0: बे जका लवणीय जल है खारो पानी
1: हाँ
0: सांबर लेक आपा जावन
1: हाँ जयपुर देखी ने
0: ट्रेन में जावा तो इन लागे धोलो धोलो चादर एकदम गुलाबी ए कहीं अरे पंछी
1: पंछी है
0: तो बे
1: हाँ वीडियो आवे सर।
0: आपरी चोंच की है उन खारे पानी में रगड़ रगड़ रगड़ आगे जा।
1: हाँ
0: तो मैं क्यों रे भाई ए इन खारे पानी में कहीं तो जो लवणीय जको है नी खारे पानी रा जका शैवाल
1: हाँ
0: बे उगा ने खार आपरो जीवन पूरो करे।
1: हाँ
0: देखो खारो पानी नमक
1: हाँ
0: समान उएरो रंग अलग उन पंछरी खूबसूरती और गुलाबी रंग अलग
1: हाँ
0: तो कुदरत रो करिश्मो है।

0: यूं लागे कोई फूल खिलोड़ा है। तो प्रगति रो जी को चित्राम है ए पक्षी गुरुन्द्र भाई बहुत सुंदर बना दिया करे। आबे में उड़े विंटे में बहुत सुंदर दिखे। इन साथे साथे ए धरा माते देखो का आप चुगो चुगे निशा आप देखा अपने घर आड़ा पड़े चिड़ी कमेड़ी वगैरह यूं चुगो चुगे तो एड़ा बढ़िया ए तोता बीजा हुटा है तो फूट रहा लागे। और आज देखो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है।
1: यूं है कहीं तो देखो भाई लोगा, तो देखो भाई लोगा प्रवासी पक्षी दिवस पूरी दुनिया में आप मनावा। इनो दिनेश भाई एक संदेश ले सका के आ पक्षियों की रक्षा करनो आपनो धर्म है आपनो कर्तव्य है। और आप जकी भी बाणी कुदरती जका है आचरण और विचार विचरण ये में बाधा नहीं पैदा करा।
0: सही है सा।
1: अगर आप कुदरती बाणो जको आव जाव है उए में कोई बाधा उत्पन्न करा बाधा तो बाधा कोई सुविधा भी उत्पन्न करा नहीं तो वाणो चक्र प्रभावित होवे।
0: सही
1: है। आ अलग बात है कि कोई कोई पक्षी जो को हजारों किलोमीटर आयो है घायल हो गयो है लाचार हो गयो है
0: देखभाल करो
1: तो उरी आप देखभाल कर सका है नी?
0: बिना चक्कर मैंने कहीं तेरे बाधा उत्पन्न नहीं करनी
1: बाधा उत्पन्न नहीं करनी है। और ए प्रवासी पक्षी एक तरह रहा नहीं भात भात रहा है। अगर आप पक्षी अभ्यारण जावा नहीं तो उठ
0: गए गाना पक्षी अभ्यारण भरत
1: तो उठ सुबह सुबह आप हड़क है घूमरी उठे आपने राजस्थान रा कई जबकि अलग अलग स्कूल रा टावर भी जान हैंग आवे कई पर्यटक आवे देश विदेश कैमरा लियो घंटों जका उठ पानी है नी उर पानी रे आए पाए जका दरखत उगियोड़ा वाण माथे बैठा पक्षिया ने वे देखे वाणी फोटो खींचे तो इतो सुंदर जको कुदरत रो करिश्मो है भात भात रा पक्षी दुनिया भर उठे आवे तो पक्षी रे इन आकर्षण जो भी भरतपुर जो को है वो एक पर्यटक स्थल बन गयो है।
0: सही कहे गुरुंद्र भाई एड़ी आवश्यकता है अपने गांव गवाड़ आड़ पाड़े अपन ढाणी रे आड़ पाड़े छोटा मोटा कोई तालाब आप विकसित करा वोटे पेड़ लगावा हरा भरा दरखत लगावा एड़ाई जिका पक्षी है वे विचरण करे बहुत ही अच्छो चित्राम इन धरा माते उकेरी जाए।
1: देखो पंछियों की चहक फूलों री महक ए आए पाए वे तो आदमी रे जीवन रो जो को सार है नी और उर माना और उर सोचन रो तरीको ही बदल जा।
0: सही कहे सा।
1: इन वास्ते कुदरत जो को है प्रकृति
0: विना हाथे छेड़छाड़ मत करो
1: उरे हाथे छेड़छाड़ मत करो उरे साथे और सामी पे रमन रो

0: प्रयास करो।
1: हाँ माने हाथे हाथे हालो
0: अरे अमे दिनेश
1: अपनी
0: भाई
1: हालो नो टाइम होगो।
0: चौपाल कार्यक्रम नो टाइम हो गया पूरो,
1: हाँ
0: तो कार्यक्रम संपन्न करन सारू आप रे साथी गुरविंदर विष्णु
1: और दिनेश राणे जाने शेख दिराओ
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: राम राम नवलो बा नवलो बा राम राम
1: राम राम राम राम भाटकड़ी ओडाड़ी जो है
0: ओ आए गो नवलो बा मैं आए गो
1: ने ने कमरी में आवर
0: कमरी हां ओ आए गो लो
1: हम कमरी में कहो एक नीमड़े हटे तो मैं लो करूं को
0: नीमड़े हटे तुम बे हमें बे आओ जो नीमड़े हटे बल्टी लगावनी है थाने
1: अरे भाई हमें कमरी में बुला हुआ है मैं एक तो लायो हूं वो कुलरियो आज बरियोड़ो है एक दिन रहो तो बोला खावे ठाडी हवा आवे हम नीमड़ियो जो कई दिन ठीक ही लाग दो पण मैं मारे ओ कई कोनी बिजली जाए थोड़ी तकबीज
0: में आ पगड़ी धारण करो केसरिया लो आज थे
1: यूं ओ ओ मतलब तो हूं तो
0: आयो जना है
1: मनठा पड़ गई हाँ। तो आज केसरिया आज को मन कटी कोई है कोई झगड़े में
0: ना हां झगड़े में नहीं मिलो तो? इने बढ़ती हूं मुकाबलो की कर
1: अरे भाई एड़ी बात है के हूं मार थे तू धोलो पूतियो मोलियो हां है जी को दूजा तीजा है जी के नहीं है ए मने रंग जका पसंद है के आ हूं है जी को कह नहीं कि भाई मार थे केसरिया पगड़ी में मैं कहूँ है पहला मोटियार पड़े में कई बार जावता नहीं कटी मल्लाऊ चाहने कबड्डी रमने उठे में बांध जाओ
0: जन उठे थे यूं त्यार हैं जावता
1: प्यार हो जाता
0: तो सफेद पगड़ी नवलो बात है
1: धोले पैर यूं कहीं हरे भाई के हुंदरी जिकिया क्या नहीं किरना गर्मी है क्या आ है जी पाँच चुप्पड़ को पड़ जाए
0: और
1: गाबो ही मार पे
0: धोलो गाबो गर्म कम वे
1: हाँ
0: ठंडो रहे
1: ठाडो रहे
0: तो नवलो बात जड़े तो हैंग थे डोनीर में जो अपने बड़ा बुजुर्ग बुढ़ हैंग धोलो गाबो फेरी
1: तो पहले थाने कोई ठा तो है को नहीं
0: मैंने तो हमें ठा पड़ी आज
1: कोई चीज गाबो लतो पैर ने है क्या तो आज अपन रे राजस्थान में रंग रंगीला जिका कह नहीं गाबा पहरी जे नहीं बे उतरी कह नहीं कि देश काल भी कारण पहरी जे
0: ओ जग जलवायु वैन परिस्थिति वैन
1: हम जे नहीं पैरवाज नारो है पैरवाज नारो है और वो ऋतु अनुसार है उनारे में हमें कहीं है कि लुगई है उठी गाबा पैर है और मिनक है भाई आप रहे हमें ट्रेलर

0: ले वापर जा पहला हड़पड़िया होता लीलन होती बे प्यार हमें हाँ। है जी को कह नहीं आयो कहने आनंद मी आयो जगह भाई ओहो हो कह पंद्रह
1: सफे हाँ अलग अलग तरह रही आउन रूगा पण आ मैं नवलो बात थोरी आज को देखो सापो पड़ियो नहीं हो ओ इतो ठंडो न इतो एकदम बात मत रख तो ही नहीं एकदम लागे के यूं के जोने के बर्फ जो रख दियो
0: जड़ मारे रेशमालो है
1: रेशमालो है
0: ओहो लागत की को
1: मेले में लेना आया
0: हाँ मेले में लाया हूँ ताड़ो ही है जो है
1: हाँ
0: नेर नेर हिसाब क्या भाई घणो तावड़ो पड़न डूब जा
1: जड़ी नेरी मौसम वे एड़ी नेरी थे वा पकड़ी प्यारो हाँ
0: बस अटे क्या टोपी लगी हुई है मात बलन डूब जा ये बात है भाई भाई दे ठाडो जीमा ठाडी ठोड़ बैठा ठाडी बात करा और क्या नहीं के ठाडो जीव रख
1: जीव रख और
0: जब जानो उन्नाड़ो है नहीं
1: जेड़ो देश है जेड़ो बेस रखो
0: हाँ ना मैं दौनी ठोड़ कर दी ठाडी
1: आगुतर
0: देखना
1: आगुतर देखना
0: ठीक है नी हमें देखे एक बात बताओ दिन है हमें आज हो कोई कुर्सी
1: नीला दे नवलोबा
0: आज तो देखे भाई के कबूतरा है अपन कह नहीं
1: रुत मुजब नवलो बाजे पक्षी पक्षी भी देखो कटो उड़ उड़ ना जा
0: अरे उठे ही घना पड़े बर्फ पड़न डूब जा
1: ओ जने बर्फ बचुन वास्ते हटा
0: देखे आ रहे तो नहीं तो कोई है जो कोई आने दिशा बतावे नहीं है जो को कोई आने कह नहीं मार्ग बतावे
1: अपने आप आवे ना अपने आप जावे
0: कितना कितना कह कह है भाई क्या तो कई हजारों कोसों आवे आवे तो
1: आवे नवलोबा आवे
0: तो ये बात भाई थे तो हमें आज धार तो कई खून खून होगा थे कई बार फटकर होगा अब गीता में है जो देखे कोयलड़ी गायड़ी है कागलियो गायड़ो है मोरी
1: गायड़ो है ना अच्छी बात है
0: अन कुर्जा गई है दाव डांडे में क्या नहीं है जीव जिनावर मत
1: अरे अटे तो जीवात्मा परमात्मा पेड़ पौधों में भगवान
0: माना है भाई
1: तो थाने हुना एक बढ़िया
0: हाँ हुना भाई बढ़िया कोई जीव हो रहा है जुड़ो
1: लो हुना मैं

0: हाँ बह के डाल लो
1: बा
0: बा।
1: हाँ भाई देखे कुर्जा गीत है बढ़िया है भाई देखे
0: ठंडो
1: पर
0: गीत है,
1: हाँ
0: मिठो गीत
1: सब
0: बढ़िया।
1: संदेशा ही देखे नहीं भाई देखे मैं तो कई साथ लूंगा पहले कोई है जो कह नहीं हारे लुगी जात आउती
0: हाँ
1: तो पास पीर रूंगड़ा कोई बदो ब्रह्म देखती
0: देखती क्या
1: अरे
0: हमसार आवता तो इठा
1: हाँ
0: पड़ती।
1: पर तीन कोई कागज चपाड़ आउता तो होता तो नहीं जो कह नहीं भाई के भाई क्यों है के उड़ती उड़ती कोई कुर्जड़िया नहीं है जो कहता है कर बाता है भाई टाइम ने नमस्कार है हाँ ना मैं बताओ विगत बार के कहा शनिवार है कौन जलमिया कौन फोत होया
0: ओ नवलोबा।
1: हाँ कहूँ करियो पहला तो
0: हाँ हाँ नवलोबा बताऊं, देखो हम देखो नवलोबा के आज रे दिन जन्म जयंती बताऊं थोने, गोपाल कृष्ण जी गोखले ए अपने उदारवादी नेता और
1: हाँ
0: ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया री जो को है स्थापना करी और गांधी जी रा राजनीतिक गुरु है। हाँ
1: ओहो ठीक ठीक गोपाल कृष्ण जी गोखले ऐसा
0: हाँ
1: दिखना तो भारत में हाँ भाई
0: देखना रत्नागिरी में जन्म लिया
1: हाँ
0: और जो को है कि रत्नागिरी में भारत रे आजादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और योगदान रियो।
1: है भाई देखा के चारू मेरू अंग्रेजा ने पींचिया नहीं जद है जो अंग्रेज नाटा बाकी तो कहो नावे वही कहो कह नहीं कि भाई टाइम आयो
0: हाँ
1: क्या पूरे कह नहीं भारत देश में है जिसको कह के भाई एकदम क्रांति आई
0: क्रांति आ गई पूरे देश में, एक अंग्रेजों के खिलाफ एक लहर बन गई। नवलोबा अन्याय वेदन तो देखो सब
1: हाँ
0: जनता।
1: अत्याचार अनाचार की नहीं चलियो भाई
0: हाँ नहीं चलियो।
1: मैं खयान गुर रहे आज तो पट्ठा पड़गो बानी किकर चाहे गरम दल रहा हो चाहे नरम दल रहा हो चाहे किकरी हो
0: ओके ही दल रहा
1: माने
0: हो
1: अटू
0: भाई
1: है जिसको कह नहीं खदेड़ दिया
0: खदेड़ दिया।
1: तो भाई देखे पर बातें पौरा ने धोख दाग और कोटि कोटि नमन करा मंदरेरा फूल चढ़ाओ बड़े
0: बड़े नवलोबा देखो के आज रे दिन जन्म जयंती है स्नेहमयी चौधरी है हिंदी साहित्य री एक प्रमुख कवयित्री हा और स्त्री विचार विमर्श री एक मुखर आवाज ही उत्तर प्रदेश में और जन्म यो।
1: ओहो भाई देखे के लाडा कोडा है जिसको आप रिका नहीं क्या कोई पोथियां लिखी
0: हाँ पोथियां लिखी।
1: आ लुगई जात रे बाबत लुगई जात लिखे बात हो रहा ना हाजी
0: हाची वे नवलोबा।
1: समझिया नहीं क्या भाई खुदरी एक तो वह पराई पीड़ ने खुदरी पीड़
0: खुदरी पीड़
1: तो पीड़ ने कह नहीं कि भाई देखो पोथी में लिखनी मोटी बात है
0: मोटी बात है।
1: आने है जो कह नहीं कोई नहीं भूल सके ना ने कोटी कोटी नमन है मंदरेरा फूल चढ़ावा
0: हाँ
1: भले
0: बड़े नवलोबा देखो के आज रे दिन जन्म जयंती है अपन देखो के देश रा जो को सिरे और मेवाड़ राजवंश रा जो को के राजा हार महाराणा प्रताप जी।
1: ओ ठीक ठीक महाराणा
0: हाँ
1: प्रताप
0: आपरी वीरता
1: आन
0: स्वाभिमान।
1: बान और शान चित्तौड़
0: हाँ
1: री कह भाई राखी
0: अटूट देशभक्ति वास्ते जानी
1: हाँ
0: जा
1: भाई
0: करे।
1: जब

0: के भाई राजा में ही है जो भाई कोई नहीं हो।
1: हाँ, हल्दी घाटी रो युद्ध हो, चाहे गोगुंदा रो युद्ध हो, कोई युद्ध हो,
0: भाई आग क्या का भाई आपने जुलम बोम बात है, महाराणा प्रताप जड़ो कोई है जो त्याग नहीं हो,
1: नहीं हो यो।
0: समझे नहीं। और क्या के भाई देखो आदिवासी वनवासी यार हाथ रहे।
1: हाँ।
0: और घासरी रोटी खान क्या नहीं भाई आजादी बरकरार रखनी
1: मोटी बात है ना।
0: नहीं तो उन टाइम क्या नहीं की भाई अकबर बादशाह जी है गुलामी है जो क्या
1: पूरी सब क्या पूरी दुनिया मत ही
0: हाँ कबूल कर ली पड़े को कबूल करी
1: नहीं करी ना लो
0: जब हिंदवाणी कह रहा है
1: हिंदवाणी
0: हमारी बात ही मोटी है ना क्या तो यार नाम ले होती है नहीं मारा रूम तो उबा होगा भाई
1: ओहो रूम तो उबा होगा
0: हाँ
1: नवलोबा जने तो थाने एक बढ़िया और कोई और बात है गायोड़ो कोई गीत होना दू
0: हाँ होना नहीं भाई
1: लो हुनाऊ देखो नवलोबा
0: मारो क्या है भाई थोड़ो क्या है रूम हिटा बैठ
1: ओ लो हुनाऊ

0: देखियो नवलो बा वीरता माते गायडो ने और
1: अरे भाई अरे जोड़े धैज को कहनी आश करियो क्या भाई थे थोड़े हैज को कहनी चितोड़ है
0: हां
1: चाहे मेवाड़ है मारी हैज को कह घोड़े ने भड़ाऊं दी और चेतक घोड़े कम को हनी भाई
0: चेतक तो कम क्यों स्वामी भक्त हो नवलो बा
1: अरे घोड़ो ही स्वामी भक्त है भाई कुदरत का खेल है
0: कुदरत का खेल है
1: घोड़ो कभी धोखो को
0: नहीं करियो नवलो बा
1: ठीक है वाह भाई वाह तो दिन दिन है कोटि कोटि नमन है परबत पोर है जिको कहनी महाराणा प्रताप ने धोख देवा हमें भले
0: भले हम देखो नवलो बा आज दिन परि निर्वाण युड़ो है एम जनार्दन रेड्डी जी आंध्र प्रदेश बाहर मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली और अनुभवी राजनेता और केंद्रीय मंत्री भी रिया और राजनीति रूप में आपकी सेवा करी
1: तो देखो जग चावा मिनखा जदि पुगा तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदड़े रफू।

0: बड़े नवलोभा देखो आज रे दिन परिनिर्वाण युड़ो है तलत महमूद पार्सो गायक और गजल सम्राट है जो को आपरी जो को रूमानी आवाज नहीं उनमें गजलों गावता है।
1: अरे तलत महमूद।
0: हाँ तलत महमूद।
1: अरे भाई यही खासा कह नहीं के मोटा मैं कह गायक कलाकार है और आरी मोटी कह नहीं बाता ही और कई एड़ी एड़ी रचना में गई देखो हूं ते कह नहीं के भाई
0: एड़ी रचना गई है।
1: हाँ भाई देखे
0: हाँ?
1: तो मारे कने एक है आरी है जो कह तो हूं
0: लो बताओ
1: बताओ बड़का हूं
0: हूं थोड़े इन कार्डो खून को नहीं हम।

0: निबंधकार पत्रकार हा और प्रभाकरी उपाधि मिलुड़ी है तो ए जो को है स्वतंत्रता सेनानी भी है
1: तो भाई
0: तो कई तरह की रचनाओं लिखी और कई तरह का ग्रंथ और संपादन करिया।
1: अच्छी बात है। देखो अगर देश की आजादी का सिपाही है तो हर करने क्या तो नारा होता क्या कोई है जिसको कह नहीं कि भाई आपकी पोती की माँ कह ताकत होती जब लड़ी जिया नहीं हता लड़ने आज
0: हाँ नहीं हता कलम री ताकत लड़ना
1: कोटी कोटी नमन है मंदिर का फूल चढ़ाओ बड़े।
0: देखो नवलुबा बड़े है तेंजिंग नॉर्गे शेरपा तो एक पर्वतारोही है और एडमंड हिलेरी एक जो पर्वतारोही है और हाथ मिलपरा और दुनिया की जो सब ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट उनमें कदम रखियो।
1: ओ

0: πέλο, πέλο.
1: Πέλο, πέλο. Χάγκο, πέλο.
0: Πάει, άλλο, κάτι δέκα. Και μπίλα, μην κάνε, κόι νι, πούλσα και κότι, κότι, ναι, μεν, μεν, ρε, πούλσα, ναι, μου, πέλε.
1: Πέλε, να βλέπω, δέκο, και άδρε, δίν, τζοκο, ε, παρήν, δίρβον, ιούρο, ε, κρέμψη, τζέτα, πάει, σομαγιά. Ωνε, βάρε, σερκάρ, τζο, ε, πάντα, μπουσέν, ου, σαμανίτ, καριά, ου, ε, σαμά, σε, ου, τζουριούρα.
0: Βα, πάει, δέκα, γάπρι, ου, ή, ζερι, σε, βα, καρι. Το άνι, κόι νι, πούλσα και κότι, κότι, ναι, μεν, μεν, ρε, πούλσα, ναι, μου, πέλε.
1: Πέλε, να βλέπω, δέκο, के स्वामी भवानी दयाल सन्यासी दक्षिण अफ्रीका में जो है हिंदी रे संस्थापक हा और महात्मा गांधी रे निकट सहयोगी हा और उन टाइम कंदो कंदो मिलान
0: पान जो गांधी जी गया अफ्रीका जद उठा हाथ लिया और उठे कहनी भारत देश री भाषा है उन्हें मजबूत करी तो मोटी बात है
1: मोटी बात है
0: यार आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदरे रा फूल चलावा यार हम बैठा तो नरेश को ये कहनी अर्जी सी होना देनी
1: लो हुना हुना लोबा

0: टोपी पहन लो आनी है तो कोई गमछी मेल दो पानी पियोड़ो राखो खपता कोसी जानो ही
1: नहीं जानो
0: चीज है जो कह नहीं के आप जू हाथ आवे जू कही है आप जल के
1: मैं तो नवलो देखो एक तो
0: अरे घड़ो बहुत तो फिर मार्ग ने है गमचार है
1: मैं तो
0: अरे मन मत बोल जाता धारी को जो
1: अरे खाटी छा पीलू मैं तो गर्मी हाली लागे
0: तो मैं जाओ धन का आगे अरे दुश्मनी में उबो तावड़ो
1: हां वा तो हम घर में रह जाओ
0: ठीक है कोई दाव डांड ध्यान रखो कोई गोने बकरी रो कोई पंख पंखे रो है
1: हां हां नवलो बा
0: मैं है जो रसोड़े में पधारो थोड़ा कह जो करो तैयारी
1: ओ ठीक है
0: फेर लू माला
1: हां फेर लो
0: हां तारे खास।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गाना हमने लिया है फिल्म परदेश से। इसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म देवदास से, इसे आवाज दी है उदित नारायण ने।

0: अभी आपने फिल्म बचना है हसीनों से के और शिल्पा राव की आवाज़ में ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। 8:45 होने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप

0: संतोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार नवान्न में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे।

0: प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से यह निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध

0: है। ये आकाशवाणी है। अमरीका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमरीकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमरीका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमरीका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वामदलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony.

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। अगला कार्यक्रम कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। आज के इस अंक में हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो मंच के पर्दों से शुरू होती है, लोकगीत की गूंज से गुजरती है और बुद्ध की पावन स्मृति तक जाती है। आज की पत्रिका के पहले पड़ाव पर हम मिलेंगे एक ऐसे रचनाकार से जिनके कलम ने कभी भी समझौता नहीं किया, जिनके नाटकों को बंद कराने की मांगे उठी पर जिनकी आवाज कभी दबी नहीं, शब्दों का विद्रोही विजय तेंदुलकर। सन 1928 6 जनवरी, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, विजय धोंडोपंत तेंदुलकर। पिता एक प्रकाशक थे तो घर में किताबों की सुगंध थी बचपन से। आर्थिक तंगी में बड़े हुए तेंदुलकर ने जल्दी ही काम शुरू किया, पत्रकारिता, अनुवाद, सिनेमा लेखन का। लेकिन उनकी असली पहचान बनी नाटकों से। मराठी में लिखे, हिंदी में अनुदित हुए और पूरे भारत में खेले गए उनके नाटकों ने दर्शकों को बेचैन किया और यही उनका उद्देश्य भी था। उन्होंने कहा, मैं दर्शकों को सुकून देने के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें उनके अपने चेहरे से मिलवाने के लिए लिखता हूँ, चाहे वो चेहरा कितना भी भद्दा क्यों ना हो। शांतता कोर्ट चालू आहे, यानी खामोश अदालत जारी है। सन 1967 में लिखा ये नाटक भारतीय रंगमंच का एक मील का पत्थर है। एक मंडली है, एक स्त्री है बेनी, जो एक नकली अदालत में असली सच्चाइयों का सामना करती है। समाज, परंपरा और पुरुष की सत्ता के विरुद्ध ये नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और फिर सखाराम बाइंडर, 1972 में लिखा गया ये नाटक एक मध्यवर्गीय पुरुष जो कि अपने घर में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी कहानी है। ये नाटक इतना विस्फोटक था कि उसे बंद कराने की मांग उठी। अदालत ने प्रतिबंध नहीं लगाया और तेंदुलकर की जीत हुई, कलम की जीत हुई। फिर घासीराम कोतवाल, ये नाटक इतिहास, राजनीति और सत्ता के खेल का ऐसा चित्रण था कि महाराष्ट्र में इसे हटाने की मांग उठी। पेशवाई के दौर की पृष्ठभूमि में लिखा गया ये नाटक राजनीति की दुष्प्रवृत्तियों का एक आईना सा बन जाता है। 19 मई 2008 को विजय तेंदुलकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके नाटक आज भी मंचित होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, पुणे में, कोलकाता में और न जाने कितनी जगहों पर। उनके पात्र आज भी जीवित हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और अनगिनत सम्मान मिले, लेकिन उनकी असली पहचान वो बेचैनी है जो उनके नाटक देखने के बाद हमारे मन में घर कर जाती है। विजय तेंदुलकर ने ही एक बार कहा था, अगर मेरे नाटक से कोई परेशान नहीं हुआ तो शायद मैंने ठीक से वो नाटक लिखा ही नहीं।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष की ये यात्रा जिसमें अनगिनत आवाजें घुली हुई हैं, अनगिनत सुर समाये हुए हैं, इस ऐतिहासिक पड़ाव पर हम मिलते हैं उस आवाज से जिसने लोकगीत को गांव की मेड़ से उठाकर विश्व मंच तक पहुंचा दिया, परंपरा को नया जीवन दिया। इसके साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है और अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने संस्मरणों को एक पुस्तक के रूप में भी विमोचित किया है। सुनते हैं पद्मश्री मालिनी अवस्थी को।
1: मैं तो यही कह सकती हूँ कि हम लोग बड़े भाग्यवान रहे, हम आकाशवाणी के स्वर्ण युग की रश्मियाँ हैं। वाचन कैसा हो और कैसी भाषा हो तो आकाशवाणी ने सिखाया। अब आज जो बोलने की शैली है, क्षमा करेंगे मुझे कहने दीजिए, अनुमति प्रदान करें जो मैं बोलूं, शायद बहुत लोगों को अखरेगा। इस मामले में मैं थोड़ा परंपरावादी हूं कि ये तो सच है कि आपको नई जनरेशन से जुड़ने के लिए अपने को बदलना पड़ेगा, ये ठीक है, लेकिन नई जनरेशन के लिए जब आप बदलेंगे तो आप उनको सुनाना क्या चाहते हैं, उनकी चीजें या अपनी चीजें? आप उनके लिए बदलिए लेकिन सुनाइए तो क्वालिटी की चीजें। मैंने तो उस दौर देखा है आकाशवाणी का, आकाशवाणी की जो उर्दू सर्विस होती थी उसकी जो तकरीरें थी, जो गुफ्तगू थी, उसको सुनने के लिए हम लोग लगाते थे। उर्दू सर्विस की बात कर रहे हो, हम लोग वो तकरीरें सुनते थे जिसमें कि कोई एक कहानी लेते थे और उस कहानी को बयान करते थे, उस कहानी की वही नायिका है। अब वो कहानी को पढ़ रही है, आप कहेंगे आजकल क्या कोई वन एक्ट प्ले करेगा, कि उस कहानी को पढ़ने का अंदाज ऐसा होता था कि उस कहानी को सुनकर आपको लगता था फिल्म देख रहे हैं पूरा। तलफ्फुज इतना अच्छा, अदायगी इतनी कमाल की कि आपको लगता था क्या बात है। तो हम लोग ने जो थिएट्रिक्स है, जो अपने गाने बजाने में भी, वो सब रेडियो से बहुत सीखा। तो मुझे लगता है कि चाहे वो भाषाई इल्म हो, लिटरेचर हो, पोइट्री हो, क्वालिटी म्यूजिक हो, क्योंकि आकाशवाणी से गानों का, जो फिल्म के गाने भी प्रसारित होते थे, उसका भी एक स्तर होता था। हमारे और भाई और हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारा म्यूजिक का जो सेंस बना वो अर्ली 70s को सुन करके बना, कि अर्ली 70s में जैसे फिल्म के गाने आ रहे थे, जैसा नॉन फिल्मी गाना बन रहा था उसने हमारा शेपअप कर दिया, क्योंकि रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साधन था। क्या बजता था, क्या मतलब क्वालिटी, तो यानी रेडियो में कोई फिल्म का गाना भी स्तरीय नहीं समझा जाता था तो नहीं। बहुत छोटी कलाकार हूं और मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं अपनी ओर से ये जरूर यहां अर्ज करूंगी कि आज जब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और रेडियो के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, यानी प्राइवेट इतने FMs हैं, इतने लोग आज कर रहे हैं, प्लीज आप वो सब मत बनिए, आप रहिए। आपको मैं यही बात दूरदर्शन के लिए कहूंगी कि दूरदर्शन को बाकी चैनल्स जैसा बनने की जरूरत नहीं है। आप क्वालिटी और तकनीक में आज की भाषा और आज की तकनीक को एड्रेस कीजिए, लेकिन कंटेंट वही रखिए। कौन बनाएगा प्रेमचंद, कौन बनाएगा टैगोर की कहानियों पर नाटक, कौन शरद चंद्र पे बनाएगा? यदि हम भी वही सब करने लगे तो मुझे तो लगता है कि आज के लिए तो यही मैं चाहूंगी कि आकाशवाणी आप ऐसी बात कहें जो सुनाए। आज रेडियो सबके पास है, कंटेंट अच्छा लगेगा तो सुनेगा, क्योंकि भीड़ में आप हमेशा से अलग थे, तो आपकी हमेशा से जो एक पहचान रही आकाशवाणी की वो भारतीयता रही है, भारत की कहानियां सुनाने, तो वो पहचान बनी रहे, बरगद का पेड़ बन के खड़े रहिए जिसको आंधियां नहीं हिला पाती। दो बज के 30 मिनट पे वो समय एक होता था, वो आकाशवाणी गोरखपुर के लिए भी, लखनऊ के लिए भी, सारे आकाशवाणी केंद्रों के लिए अलग अलग कलाकार रोज गाते थे वहां भी यहां भी। वो हम लोग उसको सुनने के लिए, क्योंकि वहां पे खाटी कलाकार गाते थे, जो सुगम संगीत गा रहे थे उनके लिए भी अनिवार्य शर्त रख दी गई उस दौर में, भोजपुरी जरूर गाएंगे, क्योंकि ये जियो आया था सरकार की ओर से और मेरे ख्याल में सारे रीजनल सेंटर्स को गया होगा कि वो अपने आंचलिक भाषा को पुष्ट करें। तो वो गाना अलग होता है कि आप सीख कर कुछ गाएं, लेकिन 2:30 बजे से आता था जो वहां के पारंपरिक लोक कलाकार को सुनने के लिए, क्योंकि उसमें कुमाऊनी भी बजता था, गढ़वाली बजता था, ब्रज का रसिया बजता था, अवधी भी सब गाते थे हम लोग, तो बड़ा कमाल का एक वो। अब शास्त्रीय संगीत का तो प्रतिदिन कार्यक्रम होते थे। आप देखिए कि एक कार्यक्रम जो आपका एक होता था स्वर सरिता सुबह 7:15 बजे, जिसमें एक राग लेते थे और उस राग से उस फिल्म में कैसे वो बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम था, क्योंकि जिनको नहीं शास्त्रीय संगीत समझ में आता है वो उस फिल्म के गाने से ये समझ जाते थे, ओह अच्छा। मुझे लगता है आज फिर से उसी तरह से उस सहजता के साथ वो चीजों को लेकर के आने की जरूरत है, वो बड़ा कमाल का कार्यक्रम था। ऐसे मंगलवार को जो शास्त्रीय संगीत की सभा मंगलवासी

0: सारे क्लासिकल म्यूजिशियंस उनका वैसे तो कभी भी गाते थे, लेकिन मंगलवासीय संगीत सभा में गाने का एक अलग गोल्ड स्टैंडर्ड होता था कि लोग कहते थे भाई मंगलवासी में हम गा रहे हैं, सुनिएगा जरूर। लोग कहते थे भैया, लोग सुनते थे, सुन करके वापस बताते थे कि आपने क्या गाया। और गजलों की जहां तक बात करी, जब आपको नियमित गाना है, आपको हर 3 महीने में आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी जो कि आप दो दो गजलें कम से कम गाएंगे, तो उसमें किसी से दूसरे से कलाम न मिले, फिर आप क्या करते हैं? आप मेहनत करते हैं, अच्छे शेर चुनते हैं, अच्छे शायरों को सुनते हैं, फिर आप सीखते हैं, धुन बनाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरा क्या गा रहा है ये सुनने की भी बड़ी एक हम लोगों में तल्लीनता रहती थी कि अगले ने क्या गाया। और ये तो हुआ, मैंने आपको बताया साथी कलाकार हम लोग, साथ साथ रेडियो में, क्योंकि वो जमाने में पैरेलल म्यूजिक क्रिएट हो रहा था फिल्म के अलावा, उसे आकाशवाणी ने जब बजाना शुरू करा तो हम पहली बार, मेरा मतलब पैरेलल म्यूजिक से है, जो गैर फिल्मी गाने जो फोक भी नहीं थे, यानी सबसे पहले आप जब गजलें सुन रहे थे, जगजीत सिंह साहब को सुन रहे थे वहां, जब आप वहां पहली बार पंकज उदास जी को सुन रहे थे, और जब आप बेगम साहिबा को सुन रहे थे, या भजनों में आप जब सुन रहे थे अच्छे अच्छे कलाकारों को, और सब बॉम्बे की रिकॉर्डिंग्स होती थी, तो आपको समझ में आता था कि हम यहां पे जो लोकल स्तर पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ये जो एल्बम्स, क्योंकि सबके वो जमाना सीडी का नहीं था तो सबके रिकॉर्ड्स भी नहीं थे, लेकिन संस्कार रोपने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ रहा। आराधना, रामचरितमानस भजन रोज बजते थे, तो एक बड़ा खूबसूरत बैलेंस म्यूजिक का 24 घंटे में रेडियो ने कर रखा था कि सबके हिस्से में सब कुछ था, कुछ इग्नोर्ड नहीं था। फिल्म म्यूजिक भी था, क्लासिकल भी था, और किस्सा कहानी थी, नौटंकी थी, बहनों के लिए भी था, किसानों के लिए भी था। रेडियो की उम्र इतनी लंबी रही है कि वो हर आदमी के कान पे वो ये रहता था कि उस सबके लिए कुछ न कुछ है।
1: ये थी पद्मश्री मालिनी अवस्थी, स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी लखनऊ। सोचिए, एक ऐसा कैनवस जिस पर हर देश का रंग है, हर सभ्यता की लकीर है, और फिर भी तस्वीर एक है। आने वाली 21 मई को यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस है, और आज भारत इस कैनवस का केंद्र है, जहां ICCR जैसी संस्थाएं, विदेशी कलाकारों के हाथ और हमारी अपनी बहुरंगी परंपराएं मिलकर एक ऐसी भाषा बोलती हैं जिसका कोई अनुवाद नहीं होता, पर समझता हर व्यक्ति है। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, एक ही मिट्टी 100-100 रंग।
2: आज से करीब 6 दशक पहले मशहूर विचारक मार्शल मैकलुहान ने एक शब्द दिया था, ग्लोबल विलेज। उन्होंने कल्पना की थी एक ऐसी दुनिया की जो सूचनाओं और तकनीक के जरिए एक छोटे से गांव में सिमट जाएगी।
3: लेकिन सच तो ये है कि मैकलुहान से हजारों साल पहले इस भारत भूमि ने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया था। भारत के लिए वैश्विक गांव कोई नई खोज नहीं, बल्कि एक प्राचीन जीवन दर्शन है, जहां पूरी दुनिया ही एक परिवार है।
2: इसी शाश्वत विचार और बिखरती हुई वैश्विक कलाओं को एक साझा मंच देने के लिए यूनेस्को ने 21 मई को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस के रूप में चिन्हित किया है।
3: ये दिन महज एक तारीख नहीं, बल्कि एक जीता जागता स्मारक है इस बात का कि विविधता समाज को बांटती नहीं, बल्कि उसे मुकम्मल बनाती है। आज भारत इसी कल्चरल डाइवर्सिटी के वैश्विक केंद्र के रूप में खड़ा है।
2: भारत दुनिया के लिए एक ऐसी सांस्कृतिक प्रयोगशाला है, जहां 7 समंदर पार के रंग हमारी मिट्टी में मिलकर एक नया इंद्रधनुष बनाते हैं। इस सिलसिले को मजबूत कर रही है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, यानी ICCR।
3: एक ऐसा संस्थान जिसका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी कला का प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर एक ऐसा साझा मंच तैयार करना है, जहां हर संस्कृति को सम्मान मिले और संवाद के लिए नए रास्ते खुलें।
2: सरकार की इन कोशिशों और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती सांस्कृतिक धमक पर आइए विस्तार से सुनते हैं परिषद की उप महानिदेशक मनीषा स्वामी को।
4: भारत में हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारी फिलॉसफी जो अप्रोच है सारे दुनिया को लेकर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जो हम बात करते हैं।

0: करते हैं, ग्लोबल विलेज भी उसी का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम यही मानते हैं कि सारी दुनिया जो है वो एक समुदाय, एक कुटुंब की तरह है। भारतीय कल्चर जो है वो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट होता है। तो मुझे लगता है कि कल्चर और ICCR ग्लोबल विलेज में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर सकता है। शुरुआत में जब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत रखा गया था 1950 में, लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत लाया गया, क्योंकि ये माना गया कि वे फॉरेन पॉलिसी का अभिन्न अंग है। इसीलिए ICCR है, उसका जो मैंडेट है वो यही है कि प्रमोशन ऑफ कल्चरल एक्सचेंजेस, आर्टिस्टिक एक्सचेंजेस, पीपल टू पीपल टाई, जो हमारे 2-3 वर्टिकल हैं, उनका मकसद ही यही है कि हम भारतीय संस्कृति का न केवल प्रचार प्रसार करें, बाकी विश्व के साथ में भी हमारे एक्सचेंजेस बढ़े। ICCR आज की तारीख में 38 जो हमारे ICC जिन्हें कहते हैं भारतीय कला केंद्र, वो विश्व में हैं, और हमारे 11 ऑफिसेज जो हैं वो भारत के अंदर हैं, प्लस जो हमारे भारतीय मिशन हैं और दूतावास और प्रधान कौंसल, वो हैं 200 के आसपास। उनके द्वारा हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी हेरिटेज का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारे पास में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, हमारे फ्लैगशिप फेस्टिवल्स हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि हम भारत से कम 700 आर्टिस्ट हर साल भारत से बाहर परफॉर्म करने के लिए भेजते हैं, और ऐसे ही हम 500 के आसपास जो आर्टिस्ट, विदेशी आर्टिस्ट हैं, जो भारत में आते हैं और वो हमारे फेस्टिवल्स में भाग लेते हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ साथ में जब विश्व में जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, कला साहित्य संस्कृति की कोई भाषा नहीं होती और वो सबके लिए आनंद का विषय है, और विशेष रूप से ICCR जो है फोक ट्राइबल आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहा है, तो ICCR स्कॉलरशिप्स के माध्यम से जो है वो विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, और 4000 स्कॉलरशिप प्रति वर्ष दी जाती है, और उसमें भी ग्लोबल साउथ जो हमारा है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। कुछ विशेष रूप से स्कॉलरशिप है जो पूरे विश्व के लिए ओपन है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। तो इस प्रकार से आयुर्वेदा, योगा, डांस एंड म्यूजिक, एक गिवन पॉइंट पे आप देखेंगे 7 से 8 हजार स्टूडेंट्स हमेशा भारत में पढ़ रहे होते हैं। दे आर अवर रियल ब्रांड एम्बेसडर्स।
1: इस दास्तां का सबसे सुंदर रंग उन विदेशी कलाकारों की आंखों में दिखता है जो यहाँ आकर अजनबी नहीं रहे। सुनिए इन आवाजों को जिन्होंने सरहदों की बंदिशों को पीछे छोड़ दिया और भारत की इस छाव में अपना दूसरा घर ढूंढ लिया।
2: नमस्ते प्यारे दोस्तों, मेरा नाम एके जुगबाया है। 15 साल पहले मुझे भारत सरकार ICCR की छात्रवृत्ति मिली। मुझे एक साल तक नई दिल्ली में रहने और पढ़ने का अवसर मिला। मेरे लिए ये बहुत ही रोचक और शानदार अनुभव था। मेरा जिंदगी नए रंगों में रंग गई। मैंने दिलचस्प लोगों के साथ पढ़ाई की और हिंदी का उपयोग मैं आज भी करती हूँ।
3: नमस्ते, मेरा नाम दरिया है। मैं ICCR के एक प्रोग्राम में हिंदी सीख रही थी और मैं भारत गई थी 2012 और 13 में। हिंदी केंद्रीय संस्थान दिल्ली के अंदर में हिंदी का एक साल का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद मैंने अपना BA रशिया से पूरा कर लिया था, मास्टर्स भी पूरा कर लिया था और PhD का कोर्स भी पूरा किया था। उसके बाद मैं हिंदी पढ़ा पाई सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अलग अलग क्षेत्रों में मैंने काम किया है भारतीय लोगों के साथ। मैंने बहुत काम किया है अनुवाद के क्षेत्र में और भारतीय टूरिस्ट को बहुत घुमाया रूस में, सेंट पीटर्सबर्ग में, जो कि मेरा अपना शहर है, और भारतीय प्रतिनिधियों के लिए बहुत अनुवाद किए हैं भारत को जानने के लिए, भारत को घूमने के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हम ICCR के 2 टूर ले पाए और हम गए थे मुंबई गोवा और कर्नाटक और तमिलनाडु देखने गए थे। और ICCR के प्रोग्राम के तहत हम बहुत सारे देशों के लोगों से भी मिल पाए, दोस्ती बना पाए, और अब मैं ये बता पाऊंगी कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग देशों के दोस्त हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी और आज तक मेरी बात लोगों से होती रहती है। और मैं सबको ये बोलूंगी, भारत जरूर जाइए, भारत घूमिए, देखिए, हिंदी सीखिए और आपको सफलता मिलेगी।
4: जब कोई विदेशी हाथ भरतनाट्यम की मुद्रा बनाता है या जब कोई विदेशी कंठ संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करता है तो भाषा के सारे फासले मिट जाते हैं।
1: शिकागो से टोकियो और सेंट पीटर्सबर्ग से पेरिस तक आज भारत की मिट्टी की महक हर दिशा में

0: है, चाहे वो आयुर्वेद का प्राचीन संयम हो या भारतीय संगीत की मधुर तान। दुनिया आज भारत को खुले दिल से गले लगा रही है।
1: भारत की ये सांस्कृतिक यात्रा हमें उस मोड़ पर ले आती है जहाँ भूगोल के नक्शे धुंधले पड़ जाते हैं और केवल मानवीय संवेदनाओं के रंग उभरते हैं।
0: आज भारत दुनिया के लिए महज एक गंतव्य नहीं, बल्कि वो अनुभव बन चुका है जहां अलग अलग संस्कृतियां नए रंग उड़ती हैं। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं प्रांजल।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति एक ही मिट्टी सौ सौ रंग। एक तरफ बड़े बड़े बाजार हैं, चमक दमक है, विज्ञापन है, और दूसरी तरफ एक छोटी सी दुकान, एक कांपती उंगली और उसमें उतरा पीढ़ियों का हुनर। आज की हमारी अगली लघु प्रस्तुति में उन्हीं की बात होगी। वो महिला शिल्पकार जो वोकल फॉर लोकल को सिर्फ नारा नहीं अपना जीवन मानती हैं। सुनते हैं उन्हीं की जबानी उनकी कहानी, वोकल फॉर लोकल हुनरमंद।
3: मेरा नाम सुनीता जाखड़ है। एक्चुअली मैं प्रोफेशनल टेक्सटाइल डिजाइनर हूँ। 12 इयर्स के बाद फिर मुझे काम करते करते मुझे लगा कि मुझे अब अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, और जो मैं घर बैठे ताकि मैं अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को भी देख पाऊँ और घर से अपना कुछ स्टार्ट कर पाऊँ। तो उसी से मेरा आइडिया है। मैंने जहाँ कंपनी में काम करती थी वही के मैंने स्टाफ, एक दो स्टाफ मैंने हायर किया, एक मशीन से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने प्रोडक्ट अपने डिफरेंट डिफरेंट जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पे मैंने उनको लिस्टेड किया। फिर देखा कि वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अपने प्रोडक्ट्स को। फिर और हौसला बढ़ाते रहे, मतलब कस्टमर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो भी हूँ अपने कस्टमर्स की वजह से ही हूँ। वो मुझे फीडबैक देते हैं अपना कि इसमें इतना जीपर्स होना चाहिए, इतना इसमें वेट होना चाहिए, चाहिए कि हम इजी कैरी कर पाए और हमारे लुक के साथ जो है वो मैच भी हो जाए। तो अपने मोस्टली जो है अपना B2B मैं एग्जीबिशन के थ्रू ज्यादा सेल करती हूँ। बाकी दो अपने ऑफलाइन स्टोर्स हैं। पूरा जो है मैं राजस्थान का आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर हेरिटेज को ही अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे इसमें शेखावटी की हवेलियां मैंने बनाई है, इस पे भी मैंने नवलगढ़ की, मंडावा की, वहां का आर्ट फॉर्म लेकर के उसको फोटोशॉप में लेयर टू लेयर उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिपीट देखते हैं, कलर देखते हैं कि कहाँ से कैसा मैचिंग करेगा ताकि मेरे कस्टमर को कुछ नया दे पाऊँ। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती हूँ।
4: मेरा नाम साक्षी है और मैं भादरगढ़ हरियाणा से आई हूँ। मेरा जो काम है वो सांझी कला में है। मैं सांझी कला को प्रोत्साहन देने के लिए और उसको जीवंत रखने के लिए काम कर रही हूँ। और सांझी कला जो है वो बहुत ही प्राचीन कला है, हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे जो ब्रज क्षेत्र है उसकी जो है वो बहुत ही प्राचीन धरोहर है। तो मैं उसके ऊपर कार्य कर रही हूँ। जैसे मैंने बहुत बचपन से ही करते थे तो मम्मी काफी चीजें करती रहती थी, तो उन्होंने भी बहुत सारा एक्सपोजर दिया और एग्जीबिशन में भी जाते रहते थे बचपन से। तो ये हमारे घर में ही एक आदत थी कि बचपन से कला की पहचान सीखना। तो मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स ट्राई करे, लेकिन फिर सांझी पे आके मेरा दिल रुक गया कि मेरे को यही करना है। बहुत कम आर्टिजन है जो ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को क्यों ना एज अ नीच लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे, तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादरगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज

0: लेके चलूं और फिर उसी में काम करूं। तो मैं अभी लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं मुझे ये आर्ट फॉर्म सीखते हुए भी और करते हुए भी, बाकी लोगों को उसके बारे में बताते हुए। जब मैंने अपना 12th पास किया था उसके बाद से ही मैंने ये आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर दिया था करना। इन सब चीजों के बारे में बस पढ़ते थे तो उसके बाद मुझे मौका मिला ताकि मैं ये आर्ट फॉर्म या इसमें कुछ कर पाऊँ। मेरा जो शहर है भादुगढ़, वहाँ पे साल में एक इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, उसमें सिर्फ आर्टिजन को बुलाए निपुण है और उनको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, वो वहाँ पे आए थे तो मैंने उनका काम देखा, फिर मैंने उनसे प्रेरणा ली, तो मैंने उनके साथ सीखते सीखते उनके साथ काम किया।
1: मेरा पूजा राहुल जो काम करते हैं पर बहुत मुश्किल है वो बाहर निकल के आ पाए, जो सरकार हमें उभारती है, जो अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड दे या फिर स्टेट अवार्ड दे, वो हमारे लिए बहुत महत्व रहता है, उसी से हम बाहर निकलते हैं, उसी से हमें तजुर्बा मिलता है।
2: ये थी हमारी प्रस्तुति वोकल फॉर लोकल हुनरमंद, सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। कुछ चीजें समय से परे होती हैं, आस्था, स्मृति और श्रद्धा। जब तथागत बुद्ध की पवित्र शरीर धातु उनकी पावन भूमि पर लौटती है तो लगता है जैसे इतिहास ने सांस ली हो। प्रस्तुत है लघु रूपक पुण्य प्रत्यावर्तन।
3: आवाज में उतरने दीजिए इस दृश्य को, हिमालय की गोद में बसा लद्दाख, ऊंचाई ऐसी कि सांस थम जाए, ठंड ऐसी कि पत्थर भी सिहर जाए।
4: और इन्हीं पहाड़ों के बीच इन दिनों एक अलग ही ऊष्मा है, एक अलग ही रोशनी है, एक ऐसी आस्था की लहर जो पूरे भारत में महसूस की जा रही है।
3: वजह है भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का लद्दाख पहुंचना। लोग इसे महज एक आयोजन नहीं मान रहे, उनके लिए ये है बुद्ध का पुनरागमन।
4: सदियों से लद्दाख ने बौद्ध धर्म की उस लौ को थामे रखा है जो बाकी दुनिया में भी रोशनी का पर्याय बन रही है। यहाँ के मठ, यहाँ के भिक्षु, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बुद्ध के संदेश से रचा बसा है।
3: जब पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की बात आई तो लद्दाख को ही चुना गया, लेकिन इन अवशेषों का यहाँ पहुँचना बुद्ध के स्वयं आने जैसा क्यों माना जा रहा है? बता रहे हैं इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के महानिदेशक श्री अजीत हल्दर।
5: ये जो एक्सपोजिशन है, रिलिक जो है, गौतम बुद्ध के जो अवशेष है, इनको गौतम बुद्ध के खुद उनका अपना ओरिजिनल सेल्फ माना जाता है। जब वो रिलिक को कहीं ले जाते हैं हम किसी देश में, तो बहुत देश में जो बुद्धिस्ट हैं वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध खुद आए हमारे देश। लद्दाख में लेने का मतलब इसलिए है क्योंकि लद्दाख ही एक ऐसा जगह है जहां पे सब बौद्ध ट्रेडिशंस जो है वो एक साथ मिलके रह रहे हैं फॉर सेवरल सेंचुरीज। और लद्दाख में जो मोनेस्ट्रीज हैं, 100 से ऊपर मोनेस्ट्रीज है, हमें सिर्फ जो मेन मोनेस्ट्रीज उनके बारे में ज्यादा ज्ञान है। तो इतने सालों से इन मोनेस्ट्रीज ने बुद्धिस्ट आर्ट, स्क्रिप्चर, मैनुस्क्रिप्ट्स, बुद्धिस्ट चैंटिंग, बुद्धिस्ट वैल्यू सिस्टम्स को एक जगह संगठित तरीके से रखा हुआ है, मगर ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो अपने कोने में कहीं पर लद्दाख में बैठे हुए अपने पास अपने सब एकत्रित करके किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। रिलिक ले जाने का मतलब यह है कि दूर दराज जगहों से ले में जो लद्दाख में जो लोग हैं सबको एक जगह लाया जाए, हर एक कोने से लोग जो बुद्धिस्ट रह रहे हैं लद्दाख में सबको लाने का बंदोबस्त किया गया है। तो ये पूरा लाके एक माहौल ऐसे क्रिएट किया जाएगा ताकि गौतम बुद्ध का जो सीख है, कम्पैशन, विजडम एंड पीस, इसके जरिए सब पे ये मैसेज जाएगा कि भाई आप लोगों ने इतने सालों से जो इतना बढ़िया काम किया उसका जो एक ट्रिब्यूट कह सकते हैं जो दिया जा रहा है आपको, ये गौतम बुद्ध का आशीर्वाद, बुद्ध खुद आपके जमीन में आके आपको आशीर्वाद दे रहा है।
4: 21 अप्रैल से 15 मई 2026 तक लेह से जांस्कर तक ये आयोजन एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह चल रहा है। प्रार्थना सभाएं, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक संध्याएं, बौद्ध दर्शन पर संवाद
3: और 1 मई बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पवित्र अवशेषों के सार्वजनिक दर्शन का अवसर भी खुला।
4: ये आयोजन केवल आस्था का पर्व नहीं, ये लद्दाख को दुनिया के नक्शे पर और गहरे अंकित करने का अवसर भी है।
3: केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

0: रहे हैं कि किस तरह यह महोत्सव लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन दोनों को नई ऊंचाइयां देगा।
1: भारत में और भारत की वांगमय में भगवान बुद्ध का चरित्र, भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व, भगवान बुद्ध का जीवन और उनका दर्शन, ये सब निश्चित रूप से एक स्ट्रांग होल्ड पिलर के रूप में है। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए उनके प्रत्यक्ष स्मृति अवशेषों का इस तरह का प्रदर्शन और उसके चलते हुए जिस तरह की ऊर्जा का उत्सर्जन वहां लद्दाख में होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए, निश्चित ही इस प्रदर्शनी के चलते हुए देश और दुनिया से अनेक लोग लद्दाख में जाने वाले हैं, स्थानीय लोग भी लद्दाख में, उसके कारण से डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ने वाला है। और जब इस तरह का बड़ा आयोजन किसी क्षेत्र में होता है, किसी जगह पर होता है, तो निश्चित ही उसके प्रति एक ध्यान आकर्षित पूरे विश्व भर का होता है, एक नई जो है उत्सुकता उस क्षेत्र को लेकर के डेवलप होती है। मैं मानता हूं कि इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव जो है वो लद्दाख के पर्यटन पर पड़ेगा।
0: शांति, करुणा, धैर्य, बुद्ध के ये तीन शब्द लद्दाख की हर घाटी में, हर मठ की दीवार पर, हर भिक्षु की सांस में जीते हैं।
2: आज जब ये पवित्र अवशेष इस धरती पर है तो लगता है जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हो, मैं यहाँ था, मैं यहाँ हूँ और रहूंगा। संस्कृति भारती के लिए मैं प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
3: बुद्ध ने कहा था, जो जाता है वो स्मृति में लौटता है, और आज की इस पत्रिका के अंतिम पड़ाव पर हम उन्हें याद करते हैं जो चले गए पर जिनके अवदान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं और हमें समृद्ध कर रहे हैं। भारत रत्न पंडित पीवी काणे, जिन्होंने धर्मशास्त्र अध्ययन को नई ऊंचाइयां दी। अमर शहीद मास्टर अमीर चंद, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके शब्दों में पूरा विश्व, पूरा आकाश समाया हुआ है। सत्यजीत रे, जिन्होंने सिनेमा को ही कविता बना दिया। और विदुषी गिरिजा देवी, जिनके स्वर में गंगा सी पवित्रता थी। इन सभी विभूतियों को पत्रिका का शत शत नमन। इसी के साथ संस्कृति भारती का ये अंक अब संपन्न होता है। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। उधर तमिलनाडु में तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
5: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले एक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे के वेलिविडूर में महबूबा नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मिश्रा पार्क का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। खेलों में चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये था राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग जनसम्मोहिनी। राग जनसम्मोहिनी के बाद लीजिए अब सुनिए राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आभोगी। मध्य लय व द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: That was Rag Jansammohini. Continuing his recital, he now presents Rag Abhogi. Madhyalay and Drut composition is set to Teen Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार मजुमदार का संतूर पर बजाया राग आप होगी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उजित उदय कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: You just heard Santoor recital by Rajkumar Majumdar. With this, we come to the end of tonight's national program of music. He was accompanied on tabla by Ujit Uday Kumar. This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। 11 बजने को हैं। कुछ देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे

0: पीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

0: विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved a majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और 59 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ